आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर, एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्स पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: कुमार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष रूप से विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए।

ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच एक एक से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज के विचार में सुनते हैं गृह कले का त्याग विषय पर विचार। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
1: घर एक मंदिर होता है जिसमें भगवान गृहस्थ धर्म का अवलंबन लेकर निवास करते हैं। जीवन चाहे जितना भी आधुनिक हो जाए, ईश्वर का ये अनुपम रूप मिटने वाला नहीं। जब हमारे संबंध दिव्य और ईश्वरीय दृष्टि से अपना अपना धर्म पालन करते हैं तो मान के चलिए वहाँ पर शांति है, समृद्धि है और सुख है। लेकिन सामाजिक विश्लेषण करें तो आज अधिकांश घरों में गृह कलह और संबंधों में अहम टकराव बना हुआ है। ये जहाँ हमारे पुराने संस्कारों को मिटने से हो रहा है, वहीं जीवन शैली की आधुनिकता भी इसकी दोषी है। बात जो भी है, गृह कलह कोई अच्छी बात नहीं। जिन घरों में कलह होती है वहाँ से सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ गायब होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि घरों में वैचारिक मतभेद और टकराव न हो, ये भी स्वाभाविक है, किंतु अगर उसके बाद धारणा ही बन जाए तो ये बहुत ही घातक होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए गलत धारणाएं न बनाएं, क्योंकि एक बार धारणा बने तो फिर वो मिटती नहीं है, क्योंकि एक बार जो धारणा बन जाती है वो फिर मिटती नहीं है। व्यक्ति पहले धारणा से टकराता है, फिर अपने अंतःकरण में मवाद जमा होने देता है, जिससे दोनों के जीवन में जहर प्रवेश कर जाता है। याद रहे, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर ये घर भी स्थायी कैसे हो सकता है? जब पल भर में विवेक से सोचने की बात आती है तो साफ दिखाई देता है ये स्थायी नहीं, तो आपके मनमुटाव कम होने लगेंगे, क्योंकि वो भी तो स्थायी नहीं है। आप संबंधों में स्फूर्ति और प्रेम खोजने लगते हैं और ये तय समझ लेते हैं कि घर इन गुणों की वृद्धि के लिए होता है। सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस बात पर कहते थे कि देखो भाई, हम सन्यासी लोगों का मार्ग अलग है और गृहस्थ का अलग। हम साधुओं की अगर आपस में न बने तो हम अलग अलग दिशाओं में निकलने को स्वतंत्र हैं, हम एक दूसरे पर हुकूमत नहीं करते। ठीक भाई, न जचे तो तू इधर जा, मैं इधर से निकल जाता हूँ, तू उधर चला जा। पर गृहस्थी में तो हम सब मर्यादा और संस्कारों से बंधे रहते हैं और घर छोड़कर कोई भी कहीं नहीं जा सकता, इसलिए घरों में रहना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। घर को केवल अपना ही नहीं, सबका घर समझें। एक दूसरे के व्यवहार का सम्मान करें, उनकी पूरी बातें सुनें और धैर्य से जवाब दें। कोशिश करें कि आपस में कलह या अहम का टकराव कम से कम पैदा हो, और हो भी जाए तो बड़े बुजुर्गों को बताकर मिल बैठकर उसका निपटारा कर लिया जाना चाहिए। बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बातें तो रोज़ाना होंगी और हम कब तक उनका पीछा करते रहेंगे। हमें अपने घरों में धर्म ग्रंथों का नियमित पाठ और उच्चारण

0: रखना चाहिए, एक दूसरे से सत्यनिष्ठा का व्यवहार करना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि एक झूठ 100 झूठों का रास्ता खोलती है। याद रहे, कलह रखने वाले घरों की सामाजिक उन्नति भी कम हो पाती है, उनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में कम संख्या में उत्तीर्ण होते हैं। जिन घरों में कलह होती है, उन घरों के लोगों से अड़ोसी पड़ोसी भी मिलना पसंद कम करते हैं, जिससे आपकी सामाजिक समरसता खत्म हो जाती है। और याद रहे, सामाजिक समरसता एक बड़ा पहलू है जिस पर हमें इसलिए विचार करना चाहिए कि इससे समाज सुंदर और सुदृढ़ होता है। हम अपने घर को मजबूत करके ही देश और समाज को मजबूत कर सकते हैं।
1: गृह कले का त्याग, ये था आज का विचार। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 166 से दोहा संख्या 168 की अंतिम चौपाई तक।
1: एपिसोड 63

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी देंगे शुष्क क्षेत्रीय फल और सब्जियों के बारे में। 7 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम सुप्रभात। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में वार्ता योग एवं स्वास्थ्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर लोकेश गुप्ता।

सवेरे 8:30 पर सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता बहुरंगी शहर बीकाणा। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश सेवक। 9:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का प्रसारण होगा सवेरे 9:30 पर। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

श्रोताओं, 11 बजे आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का एपिसोड नंबर 17 आज प्रसारित किया जाएगा। दिन में 1:05 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन। चर्चा के विषय रहेंगे कौशल विकास योजना, ग्रामीण महिलाओं में कौशल उन्नयन, पारंपरिक पाक कला का संरक्षण, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, साथ ही गीत संगीत और रसोई की बातें। संध्या 5:05 पर श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। आज की बात का विषय रहेगा सामुदायिक योग के लाभ। लघु जानकारी आप सुनेंगे सतत पाक कला दिवस के बारे में, न्यू इंडिया का सपना और विकसित भारत का 2047 का संकल्प, रोजगार समाचार और गीत संगीत।

संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम धीनेरी बातें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, मुर्गियों के प्रमुख रोग और रोकथाम के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़, सहायक आचार्य वेटनरी कॉलेज बीकानेर। कार्यक्रम में सहभागिता रहेगी श्री राम साय हर्ष की और श्री चंद्रशेखर जोशी की। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। ये कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले होगा, प्रस्तुति बीकानेर केंद्र की रहेगी।

जिले की चिट्ठी 6:40 पर जयपुर केंद्र से रिले की जाएगी।

7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा के विषय रहेंगे वर्षा जल भंडारण की तकनीकी, बीकानेर क्षेत्र में खरीफ सीजन की प्रमुख फसलें, प्रधानमंत्री कौशल योजना, लोकगीत, मौसम संबंधी जानकारी। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर सुनिए कुछ चुनिंदा गजलें। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है खेती की बातें।
1: पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है जिथे विषम परिस्थितियां हैं। जिया के उच्च तापमान रेवे है, बिरखा रो अभाव रेवे और शुष्क जलवायु रे कारण वनस्पति रो अभाव देखो जावे है। मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं मोकड़ी है, बीरमाइने प्रमुख है। एक तो है काचरी, केर, सांगरी, कुमठ, बोरिया, ग्वार पाठो और मतीरो और भी भात भातरा फल और सब्जियां हैं। आंसू बनेवड़ा सुस्वाद व्यंजन जठे पोषक तत्वासु भरपूर है, बठे ही ऐसगड़ा मरु प्रदेश वासियां रे पोषण ने अच्छो रखन सारू भी सहायता करे है। अपारे अठे एक के बते के केर कुमटिया सांगरी काचर बोर मतीर तीनों लोका नहीं मिले तरसे देव अखीर। आर मायने आ फलारे बारे में साची और एकदम सटीक बात कही जी है। अपर राजस्थान में उगनाड़ा ए कुछ फल सब्जियां हैं, अमे पोषण सु भरपूर और स्वाद में उत्तम फल और सब्जियां रे बारे में कीटनाशक जेड़ी दवाया रो उपयोग ना रे बराबर हुए है। इन वास्ते ए पूरी तरह जैविक हुए है। अबे आप बात करें बोरिया री। बोरिया अपर ठहरा एक मौसमी फल है। हल्के हरे रंगरा ए फल पाक्या पछे लाल अर भूरे रंगरा हो जावे। ए एक मरुस्थलीय पौधा है जिका विटामिन सी सु भरपूर यानी 85 मिलीग्राम 100 ग्राम है। ए पाचन स्वस्थ राखण में और रक्त शुद्धिकरण में सहायता करे है। बोरिया सु जेम, स्क्वेश और कैंडी भी बनाई जा सके है। अब आप बात करा ग्वार पाठेरी। घृत कुमारी या एलोवेरा जिके ने क्वारंगदल या ग्वार पाठेरे नाम सु जानो जावे है, वो एक औषधीय पौधे रूप में विख्यात है। वो बिना तनेरो या बहुत ही छोटे तनेरो एक गुदेदार और रसीलो पौधो होवे है। इरी लंबाई 60 सु 100 सेंटीमीटर ताई होवे है। वो गठिया, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल और पाचन संबंधी रोगा में फायदो करे है, रोग निदान में फायदो करे है। इन मायने विटामिन सी री मात्रा 100 ग्राम रे मायने 53 मिलीग्राम मानी जावे है। ग्वार पाठेरी सब्जी अचार रे सागे सागे इरा जैम, स्क्वेश, लाडू और बिस्कुट भी बनाई जावन लाग गया। मतीरे की बात करा तो मतीरो रेगिस्तान में पायो जावन वाला रसू भरपूर मीठो तरोताजो कर देवन वालो फल है। मतीरे रो मीठो फन यानी कि 5-15% ताई होवे है जको फल रे पकने सागे बढ़े है। काचो मतीरो जिके ने लोइयो केवे है इरो साग बनायो जावे है। मतीरे रा बीज यानी मगज 12 महीने प्रोटीन 25-32% ताई और पोषक तेल है 32-40% ताई होवे है। इसु भरपूर होवे है और ए प्राय मिठाई और लड्डू बनाने में उपयोग में लिया जावे है। और आजकल मतीरे रो स्क्वेश और शरबत भी बनायो जावन लाग गयो। बात करा काचरी दी तो काचरी में एड़ा पोषक तत्व मौजूद होवे है। प्रोटीन 0.28 ग्राम 100 ग्राम रे मायने, विटामिन सी री मात्रा हुए है 100 ग्राम रे मायने 29.81 मिलीग्राम और कई मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस भी होवे है जिनसु ओ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण और दूजी समस्यावा ने दूर करने में सहायता करे। आ काचरी कब्ज, अपच और पेट संबंधी रोगा ने दूर रखने में मदद करे है। इरी सब्जी, फल या बीज कब्ज दूर करने में सहायता करे है। काचरी रो सुकोड़ो पाउडर राजस्थान में महिला मा सब्जी रे मायने गाले है, चटनी में गाले है। इधर सागे काचरी री सब्जी, चटनी, अचार और माउथ फ्रेशनर भी बनायो जा सके है। अबे आप बात करा केरिया री तो केरिया रो फल छोटो हरो गोल होया करे है। सांगरी री आप बात करा तो बहुत जरूरी है, सांगरी ने भूलिया कोनी सरे। रेगिस्तान रो कल्प वृक्ष के

खेजड़ी या समीर फल सांगरी है ओ आपर अठेरे हर जीवन रे मायने शोभा बढ़ावे है। कुमठ री बात करें तो कुमठ पंचकूटे में पायो जाने वाला इन छोटा और चपटे बीजा रे गुण रे बारे में जानकारी कम मिले है, पर आप बात करा कुमठ रे बीजा ने धोर उबाल रा संरक्षित कर सका है और ए भी घणो फायदो करे है। तो इया कर आपा आ जाना कि आपारे इन शुष्क क्षेत्र रे मायने ए जका फल है बोरिया ग्वार पाठो मतीरा काचरी केर सांगरी कुमठ ए सगड़ा आपारे अठेरी धोरा।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उगते सूरज की हर किरण हमें नए उत्साह और नए उमंग का संचार करती है। श्रोताओं, कहते हैं स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जीवन में हम धन कमाने में, जीवन में सफलता और सुविधाएं पाने में अक्सर इतने डूब जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि पहली आवश्यकता है हमारा स्वस्थ रहना। जी हाँ श्रोताओं, अगर हम स्वस्थ हैं तो हर चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। श्रोताओं, आवश्यकता इस बात की है कि हर नई सुबह हम नई उमंग, नई ऊर्जा का संचार स्वयं में करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में ये नई ऊर्जा देने वाला गीत।

0: श्रोताओं, हमारे स्वस्थ रहने में योग का विशेष योगदान है। श्रोताओं, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि ये हमारे शरीर, मन, आत्मा के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। श्रोताओं, नियमित योगाभ्यास से हमारा शरीर मजबूत बनता है, लचीला बनता है, रक्त संचार बेहतर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। श्रोताओं, हम ये कह सकते हैं कि योग का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगर हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा तनाव कम करता है। सकारात्मक सोच विकसित होती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो श्रोताओं, आज हम सुनवाते हैं इसी विषय पर आपको वार्ता, योग एवं स्वास्थ्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर लोकेश गुप्ता।
1: जिस योग को स्वामी रामदेव जी महाराज ने गुफाओं और कंदराओं से निकालकर आम जन तक पहुंचाया था, उसी योग को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कदम आगे बढ़कर विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है। इस योग में विश्व का दृढ़ विश्वास ही है, जिसकी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को 177 देशों ने अत्यंत सीमित समय में पारित कर दिया। प्राचीन काल से ही योग और स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित माने गए हैं। इन दोनों के बीच संबंध की व्याख्या भिन्न भिन्न शब्दों में की जाती रही है। गीता के अनुसार योग एक तकनीक है जिसके अभ्यास के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन किया जा सकता है और दुखों को समाप्त किया जा सकता है। योग दर्शन के अनुसार यह एक स्थिति है जिसको प्राप्त कर लेने पर ही वास्तविक स्वास्थ्य की अनुभूति हो सकती है। स्वास्थ्य का तात्पर्य ही है स्व में स्थित हो जाना, जो योग के संपन्न होने पर ही संभव हो सकता है। आम धारणा में योग का मतलब कुछ आसन करना अथवा कुछ तरह की कसरतें करना ही माना गया है, परंतु योग एक जीवन दर्शन है, योग आत्म अनुशासन है, योग एक जीवन पद्धति है, योग व्याधि मुक्त एवं समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है। योग मात्र एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु यह एक ऐसा संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है जो केवल शारीरिक रोगों का ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों का भी निवारण करता है। शरीर और मन का परस्पर गहरा संबंध है, किसी एक की उपेक्षा से दूसरे की देखभाल नहीं की जा सकती। इसीलिए ही तो कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। योगासन पद्धति व्यायाम करने की अन्य पद्धतियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य पद्धतियों से शरीर के आंतरिक अंगों को योग्य व्यायाम नहीं मिल पाता, जबकि योगासन से शरीर के आंतरिक अंगों को पर्याप्त मात्रा में व्यायाम मिल जाता है। योगासन का प्रभाव मन और इंद्रियों पर अधिक पड़ता है, इस कारण मन और इंद्रियों को वश में रखने की व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का विकास होता है। योगासन से शरीर की विकृतियां भली भांति बाहर निकल सकती हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और शरीर रोग मुक्त रहता है। इससे शरीर लचीला बनता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है तथा युवा अवस्था अधिक समय तक बनी रहती है। योगासन से मन शांति का अनुभव करता है, इस कारण मानसिक शक्ति बढ़ती है।

एवं बुद्धि का विकास होता है। योगासन से शरीर की विभिन्न ग्रंथियों को जागृत किया जा सकता है, जिससे उसमें अपेक्षित मात्रा में रस उत्पन्न होता है और इससे शरीर का संतुलित विकास होता है। योगासन और प्राणायाम से कब्ज, गैस, मधुमेह, रक्तचाप, हर्निया, सिर दर्द आदि रोग मिटाए जा सकते हैं। योगासन से हृदय तथा ज्ञान तंत्र सशक्त होते हैं और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, चित्त को शांति मिलती है। नियमित रूप से योगासन करने से व्यक्ति के शरीर में किसी तरह की अशुद्धि नहीं रहती है, इसलिए उसका मन सदा शांत एवं प्रसन्न रहता है। शरीर विज्ञान का यह सिद्धांत है कि शरीर के संकोचन एवं प्रसारण होने से उनकी शक्ति का विकास होता है तथा रोगों की निवृत्ति होती है। योगासन से यह प्रक्रिया सहज ही हो जाती है। आसन एवं प्राणायाम के द्वारा शरीर की ग्रंथियों एवं मांसपेशियों में आकुंचन प्रसारण की क्रियाओं द्वारा उनका आरोग्य बढ़ता है। रक्त को वहन करने वाली धमनियां एवं शिराएं स्वस्थ हो जाती है। अतः आसन एवं अन्य योगिक क्रियाओं से पेनक्रियाज एक्टिव होकर इंसुलिन ठीक मात्रा में बनाने लगता है, जिससे डायबिटीज आदि रोग दूर होने में सहायता मिलती है। पाचन तंत्र की स्वस्थता पर पूरे शरीर की स्वस्थता निर्भर करती है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का एवं फूर्ति युक्त बन जाता है। योग से हृदय रोग जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। फेफड़ों में पूर्ण स्वस्थ वायु आ जाती है तथा उससे हृदय को भी बल मिलता है। योगिक क्रियाओं से वसा का पाचन होकर शरीर का भार कम होता है और शरीर स्वस्थ, सुडोल एवं सुंदर बनता है। इतना ही नहीं, इस स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर एवं मन के लिए भी अनिवार्य है। योग से इंद्रियां एवं मन का निग्रह होता है। अब मैं प्राणायाम के विषय में बात करना चाहूंगा। यहाँ पर 8 प्रक्रियाएं संकलित है। पहली है भस्त्रिका। इससे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नजला, साइनस आदि समस्त कफ दूर होने में सहायता मिलती है। फेफड़े सबल बनते हैं और हृदय और मस्तिष्क को भी शुद्ध प्राणवायु मिलने से आरोग्य लाभ होता है। थायराइड एवं टॉन्सिल से संबंधित रोग दूर होते हैं। हम सामान्यतः 500 ml टाइडल वॉल्यूम प्राणवायु का उपयोग करते हैं, लेकिन इस प्राणायाम से गहरी सांस लेने से 4500 ml तक प्राणवायु ग्रहण कर सकते हैं। अथवा किसी व्यक्ति की अधिक क्षमता हो तो वह 8000 ml प्राणवायु ले सकता है, जिसे कि वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है कपालभाति। मस्तिष्क और मुखमंडल पर ओज, तेज, आभा एवं सौंदर्य बढ़ता है। समस्त कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि रोगों से राहत मिलती है। कब्ज जैसा रोग भी इस प्राणायाम से नियमित रूप से करने से मिट जाता है और पेट का बढ़ा हुआ भार 1 माह में 4 से 6 किलो तक कम किया जा सकता है। हृदय की धमनियों में आए हुए ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। इस प्राणायाम से मस्तिष्क में बहने वाले सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF में न्यूरोपेप्टाइड्स का निर्माण होता है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्राणायाम की तीसरी प्रक्रिया है बाह्य प्राणायाम अर्थात त्रिबंध। यह हानि रहित प्राणायाम है। इससे मन की चंचलता दूर होती है, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, उदर रोगों में लाभदायक है, बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र होती है। यह करने से पेट के सभी अवयवों पर विशेष बल पड़ता है। अतः पेट को विश्राम और आरोग्य देने के लिए त्रिबंध प्राणायाम करना चाहिए। चौथे प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। जो व्यक्ति साल भर सर्दी, जुकाम, खांसी आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं तथा जिनको थायराइड संबंधित रोग, स्नोरिंग, हृदय रोग, अस्थमा, अनिद्रा, मानसिक तनाव, क्षय, ज्वर आदि रोग होते हैं, उनके लिए लाभप्रद है। इससे बच्चों का तुतलाना भी ठीक हो जाता है। पंचम प्रक्रिया है अनुलोम विलोम। संपूर्ण नाड़ियों को शुद्ध होने से देह पूर्ण स्वस्थ, कांतिमय एवं बलिष्ठ बनता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से लगभग 3 से 4 महीनों में 30 से 40% तक ब्लॉकेज खुल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, SDL, LDL आदि की अनियमितताएं दूर हो जाती है। इस प्राणायाम से रक्त में ऑक्सीजन और

0: कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित मात्रा में रहते हैं। कई बार देखा गया है कि प्राकृतिक ऑक्सीजन अथवा ऑक्सीजन चैम्बर से ऑक्सीजन देने पर आंखों के लेंस की कठोरता बढ़ जाती है, जिसे लेंटिकुलर ओपेसिटी कहते हैं, और आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस प्राणायाम से ऑक्सीजन रक्त में संतुलित मात्रा में रहती है। हमारे जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी सूक्ष्म मात्रा में महत्वपूर्ण है, अतः इन प्राणायामों से कार्बन डाइऑक्साइड भी संतुलित मात्रा में रहती है, जो कि न्यूरोपेप्टाइड्स के निर्माण के लिए आवश्यक है। छठी प्रक्रिया है भ्रामरी प्राणायाम। इसको करने से मन की चंचलता दूर होती है। मानसिक तनाव, उत्तेजना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि में लाभप्रद है, ध्यान के लिए अत्यंत उपयोगी है। सप्तम प्रक्रिया है उद्गीत प्राणायाम। असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को यह करने से बहुत ही आराम मिलता है। अष्टम प्रक्रिया है प्रण प्राणायाम। यह ध्यान की प्रक्रिया है। इस प्रकार हमने देखा कि प्राणायाम मात्र से ही शरीर को कितने सारे लाभ होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, योग एक चिकित्सा शास्त्र है, तो संपूर्ण योग से कितने ही लाभ होते होंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। विषय का समापन करते हुए मेरी ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए हम सब योग अपनाएं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे योग एवं स्वास्थ्य विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर लोकेश गुप्ता।

श्रोताओं, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी प्रकृति से जुड़ाव का एक माध्यम है। आज 18 जून और हम मना रहे हैं सतत पाक कला दिवस, और इसका उद्देश्य है ऐसी खाद्य आदतों को बढ़ाना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, स्थानीय किसानों को समर्थन दे और खाद्य अपव्यय को रोके और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन दे। श्रोताओं, स्थानीय और मौसमी खास तौर से खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, भोजन की बर्बादी को हम करें कम, पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजनों को बढ़ावा दें। श्रोताओं, हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भोजन का सम्मान करेंगे, जरूरत के अनुसार भोजन बनाएंगे और खाएंगे, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाकर स्वस्थ समाज और स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में अपना योगदान देंगे, भोजन की बर्बादी को रोकेंगे, तभी सतत पाक कला का ये जो दिवस है वो होगा सक्सेस। तो श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का एक ही संदेश है कि सतत पाक कला अपनाएं, स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य को बनाएं।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, सच्ची सुंदरता व्यक्ति के व्यवहार में होती है, उसके स्वभाव में होती है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी चमक सोने चांदी और मोतियों से भी अधिक होती है, और वो है हमारा प्रेम, हमारी सादगी और हमारा अपनापन।

मोहरा फिल्म का गीत था ये, स्वर पंकज उदास और साधना सरगम के थे।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म यादों की बारात से। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आई मिलन की रात फिल्म का ये गीत। स्वर अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के थे। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है अमृत।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे थे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इसी सभा में आप सवेरे 10 बजे सुनेंगे। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह

0: में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: We have a huge pool of talent.
7: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते

0: का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of

बहुरंगी भक्ति और शक्ति के मनमोहक दृश्य चलचित्र की भांति घूमने लग, यहाँ के धार्मिक स्थल और सभ्यता और संस्कृति की झलक देखते ही बनती है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बीकानेर नगर आपसी भाईचारे, अपनेपन और अतिथि सत्कार का साक्षात और साकार रूप रहा है। बीकानेर नगर संपूर्ण भारतवर्ष में सेवा, संस्कृति, त्याग, बलिदान और कला से लेकर व्यापार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। सीमावर्ती इलाका होने के कारण यह सैन्य सुरक्षा का सामरिक महत्व बनाए रखने के साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी संजोए रखा है। बीकानेर शहर जितना रंगीला और रोचक है, उतनी ही रोचक कहानी इसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। राजस्थान में थार रेगिस्तानों के बीचों बीच मौजूद बीकानेर नगर की खूबसूरती अपने आप में निराली है। इतिहासकारों की माने तो बीकानेर नगर की स्थापना से पूर्व इसकी बसावट की श्रृंखला महाभारत काल से जुड़ी हुई है। उस वक्त इस क्षेत्र को जंगल प्रदेश कहा जाता था। आज के समय बीकानेर अपनी खूबसूरत स्थापत्य कला, रजवाड़ा, संस्कृति और उद्यमान खान पान और रहन सहन के लिए विख्यात है। बीकानेर स्थापना से जुड़ी जानकारी के साथ हम यह भी जानेंगे कि कैसे बीकानेर के लोग अपने शहर स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मानकर सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देते हैं। मारवाड़ जोधपुर के शासक राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र राव बीका द्वारा नए राज्य के रूप में विक्रम संवत 1545 की वैशाख शुक्ला द्वितीया को बीकानेर नगर की स्थापना किए जाने को लेकर यह दुहा जन साधारण में सर्वत्र प्रचलित है। 1545 खुद वैशाख सुमेर थावर बीजे थरपियो बीके बीकानेर। अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे और इतिहास के कई पन्नों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराता बीकानेर शहर आज 535 साल का हो गया है। 5 शताब्दियां बीतने के बावजूद बीकानेर आज भी एक युवा के भांति अनवरत विकास के लिए सतत प्रवाहमान है। इस शहर के लोग बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का आपस में गहरा और आत्मिक रिश्ता है। यही कारण है कि यहाँ कभी भी धर्म, जाति या संप्रदाय को लेकर विवाद नहीं हुआ। तभी तो इतिहास के इस सत्य को बीकानेर के किसी कवि ने अपनी मातृभाषा राजस्थानी में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कण कण में खुद खुदा विराजे, हर हिवड़े में राम रे, धोरा री इन धरती रो, शहर बीकानो नाम रे। हाल ही के वर्षों में देश जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी के घोर संकट काल से गुजर रहा था, तब भी बीकानेर शहर एक बार फिर अपने आप एक मिसाल बना। एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर दिखाई देने वाला हर बीकानेर वासी सेवा भावी व्यक्ति के रूप में नजर आया। शहर में चारों तरफ जाति धर्म को भूलकर इंसान के रूप में हर व्यक्ति गरीब लोगों की मदद में लगे हुए थे। बीकानेर के प्रख्यात शायर अजीज आजाद ने बीकानेर के लिए क्या खूब लिखा है, तुम हो खंजर तो सीने में समा लगे लेंगे तुम्हें, पर जरा प्यार से बाहों में तो भरकर देखो, मेरा दावा है कि सब जहर उतर जाएगा, तुम मेरे शहर में 2 दिन तो ठहर कर तो देखो। हजार हवेलियों का शहर कहा जाने वाला बीकानेर 21 अप्रैल को 535वां स्थापना दिवस मनाना जा रहा है। वैसे तो इस खास मौके पर सप्ताह भर तक शहर में कार्यक्रमों का दौर चलता है, लेकिन मुख्य स्थापना दिवस पर परंपरागत रूप से बाजरे व मोठ का खींचड़ा व ठंडी इमलानी घर घर बनाई जाती है। अक्षय द्वितीया के ही दिन लोग घरों में पूजा करके नई मटकी अपने पानी के परिंदे में रखते हैं। स्थापना दिवस और उसके अगले दिन अक्षय तृतीया को बीकानेर और आसपास के कस्बों गांवों में पतंगबाजी का दौर भी जमकर चलता है। बीकानेर शहर को राजस्थान का दिल कहते हैं। बीकानेर राजस्थान के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहां सबसे अधिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यह शहर आज भी अपनी राजपूताना सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक किलों के पुराने इतिहास के साथ गिरा हुआ है। इस शहर में मौजूद ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में सबसे विख्यात यहाँ का जूनागढ़ किला है। यह एक शानदार संरचना है जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा राय सिंह

अपने शासन काल में करवाया। इस किले के चारों तरफ ही बीकानेर बसा हुआ है। शुरू में इस किले को चिंतामणि कहा जाता था, लेकिन 19वीं सदी में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ कर दिया गया। किले की गैलरी, बाग बगीचे और इसके जाली झरोखे पर्यटनों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जूनागढ़ किले के कर्ण महल, अनूप महल, चंद्र महल, फूल महल और सबसे ऊपर बादल महल दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ की वास्तुकला मुगल, गुजराती और राजस्थानी शैली का एक अच्छा मिश्रण है। इस किले को बीकानेर में घूमने के लिए सबसे श्रेष्ठ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माना जाता है। इसके बाद टूरिज्म हेरिटेज के रूप में लालगेट पैलेस आता है। जूनागढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित इस पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के समय 1902 और 1926 के बीच हुआ था। यूरोपियन वास्तुकला शैली से बने लालगढ़ पैलेस महल को अब एक हेरिटेज होटल के रूप में पर्यटनों के लिए संचालित किया जा रहा है। आंतरिक साज सजा के साथ मिश्रित राजपुताना डिजाइन यहां आने वाले पर्यटनों को आकर्षित करती है। महल में एक संग्रहालय भी शामिल है जो गंगा निवास के अंदर स्थित है। यहां बीकानेर की कला से जुड़े लघु चित्रों को देखा जा सकता है। दुलमेरा गांव के लाल पत्थरों से निर्मित इस सुंदर स्थापत्य संरचना का रंग शाम ढलते ही बदलने लगता है। हड़प्पा संस्कृति, कुषाण और गुप्त युग से संबंधित कलाकृतियों को भी यहाँ संरक्षित किया गया है। इसके अलावा लालगढ़ पैलेस के परिसर में एक पोथीखाना भी है जो अनूप संस्कृति लाइब्रेरी के रूप में विदेशों तक विख्यात है। इसमें प्राचीन पंडुलिपियों का दुर्लभ संग्रह मौजूद है। बीकानेर नगर से 30 किलोमीटर दूर जैसलमेर रोड पर गजनेर पैलेस एक झील के किनारे निर्मित होने से पर्यटनों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हुआ है। इस पैलेस का निर्माण बीकानेर के पूर्व शासक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। उनके शासन काल में गजनेर पैलेस क्षेत्र शिकारगाह के रूप में प्रसिद्ध था। वर्ष 1976 में इसे भी एक हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया। गजनेर पैलेस पर्यटनों को बोटिंग से लेकर रेगिस्तानी सफारी तक कई तरह के वेकेशन एक्टिविटी प्रदान करता है। पूरा इलाका हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है। जटिल रूप से तराशे गए स्तंभ, झरोखे और पर्दे गजनेर पैलेस के प्रमुख आकर्षण है। बीकानेर अपनी हवेलियों के लिए भी जाना जाता है, तभी तो इसे हजार हवेलियों का शहर कहा जाता है। बीकानेर के धनी व्यापारियों ने कुछ 100 वर्षों की अवधि में रामप्रिया हवेलियों का निर्माण करवाया था। इन हवेलियों के प्रवेश द्वार से लेकर ऊपर की जाली झरोखे पर उत्कीर्ण बारीक वस्तु चित्र पर्यटकों का आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इन हवेलियों में से एक शहर की मशहूर हवेली का निर्माण रामपुरा जाति के एक व्यापारी ने करवाया था। उन्हीं के नाम से इस हवेली का नामकरण हुआ। स्थापत्य कला के नायाब नमूनों के लिए मशहूर बीकानेर नगर में धार्मिक मंदिर की भी धूम रही है। इस नगर के नाथ माने जाने वाले भगवान लक्ष्मीनाथ यानी विष्णु भगवान को बीकानेर शासकों ने अपना इष्ट देवता माना तथा स्वयं को उनके दीवान या मंत्री के रूप में संचालित किया। संगमरमर और लाल पत्थर से बने इस मंदिर का निर्माण भगवान लक्ष्मीनाथ की दिवाली के रूप में किया गया। मानो बीकानेर नगर की धार्मिक आस्था और शोभा इस मंदिर में समाई हुई है। नगर के नाथ के साथ ही इस नगर स्थापना के लिए राव बीका को साक्षात दर्शन देकर कुल देवी करणी जी का भव्य मंदिर बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड पर स्थित देशनुक कस्बे में निर्मित है। यह मंदिर चूहों, जिसे स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है, के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर करीब 600 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके परिसर में करीब 25,000 चूहे रहते हैं। इनमें से अनेक चूहे सफेद रंग के भी है। सफेद चूहे के दर्शन होना बहुत शुभ माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चूहों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला प्रसाद यहाँ बेहद पवित्र माना जाता है। यह विश्व विख्यात मंदिर भी वास्तु व स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। बीकानेर नगर के शिवबाड़ी क्षेत्र में स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर भी स्थानीय निवासियों के लिए गहरी श्रद्धा और अटूट आस्था केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव की काले संगमरमर की बनी चौमुखी प्रतिमा के सामने
कांस्य की नंदी प्रतिमा भी

0: स्थापित है। मंदिर में दो बड़े जलाशय भी हैं, जिन्हें बावड़ी के रूप में जाना जाता है। बीकानेर से मात्र 6 किलोमीटर दूरी ऊंची सफील के बीच निर्मित यह मंदिर शिवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा डूंगर सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था, इसीलिए आज यह लालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर से 24 किलोमीटर दूर जैसलमेर रोड से कुछ हटकर कौडमदेसरजव गांव भैरू जी का मंदिर भी नगरवासियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राव बीका ने स्वयं अपने प्रारंभिक शासन काल में की थी। जोधपुर से आने के 3 वर्ष बाद की राव बीका ने कौडमदेसर गांव में भैरू जी की मूर्ति स्थापित करवा कर पूजा अर्चना प्रारंभ की। प्रारंभ में इसी स्थान को बीकानेर नगर की नींव रखने के लिए चुना गया था। बाद में वास्तुशास्त्रियों की सलाह से यह विचार बदल दिया गया। जैन धर्म के 5वें तीर्थकर सुमतीनाथ जी को समर्पित भांडासाह जैन मंदिर बीकानेर नगर में 15वीं शताब्दी में बनाया गया। इसमें कांच का सुंदर जड़ाऊ काम, भित्ति चित्र तथा सोने के पत्थरों से बने चित्र चिताकर्षक व मनमोहक है। देश के सभी भागों में यही भक्तगण विशेष रूप से जैन धर्म के अनुयायी दर्शनार्थ आते हैं। अपनी ऐतिहासिक विरासत और वैभव को समेटे बीकानेर नगर अपने पर्यटन स्थलों के लिए विश्व विख्यात है, तो यहाँ के पटाधर पुरुष और नए नवेले परिधान की सुंदर स्त्रियों ने भी इसके स्वाभिमान और गौरव को बनाए रखा है। खाद्य पदार्थों के रूप में बीकानेर जगत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का भुजिया और रसगुल्ला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। किसी समय रेगिस्तान के जहाज के रूप में प्रसिद्ध ऊंटों पर होने वाला व्यापार भले ही अब हवाई जहाज और जलपोतों से होने लगा है, लेकिन उपयुक्त 5 वस्तुएं तो बीकानेर नगर की स्थापना से ही सुविख्यात रही है। तभी तो किसी समय लिखा गया यह दुआ आज भी जन साधारण में प्रचलित और प्रासंगिक है। ऊंट मिठाई स्त्री सोनो गहनो सा, 5 चीज पृथ्वी श्रे, वाह बीकाना वाह।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता बहुरंगी शहर बीकाना। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश सेवक, कार्यक्रम सौरभ के अंतर्गत। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। श्रोताओं, जीवन के रंग भी कितने निराले हैं। किसी की झोली में खुशियां अधिक है तो किसी के हिस्से में गम भी आते हैं, लेकिन जीवन का यही उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाता है और आगे बढ़ना सिखाता है।

श्रोता, प्रेम की आंखों से देखा जाए तो हर अदा खास लगती है और हर मुस्कान बेमिसाल। इसी खूबसूरत एहसास को स्वर देता सुनिए ये अगला गीत।

श्रोता, प्रकृति के कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। शांत झील में झलकता चांद, ठहरी हुई सी रात और मन की गहराइयों से उठती हुई भावनाएं।

0: ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थे पंकज उधास। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु

0: कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और एआई आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24

0: जो 2024-25 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नन्ली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी DPR तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएं और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
0: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं धीरा सेन के गाए लोकगीत।

ಧರಣ ಆತನೋ ಸಿಂಧೂರು ಧರಣ ಗಾಯ ರಾಘವಾನ್ ಕಾಯ ಪಂಚಿ ರಾಮಾರಾಯ.

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धीरा सेन के गाए लोकगीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।

0: और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
1: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
0: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहां मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहां लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे।

0: श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह

उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा।

0: रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? मां के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो हा? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो
0: हा?
2: मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती
2: हुँ?
0: सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा।

0: तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
2: तू क्या जानेगी?
0: तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है।

0: मिले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
0: हाँ।
1: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर?

0: अभी कहां, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
2: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
4: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
4: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
4: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना।
4: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज पर।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम का एपिसोड नंबर 17 प्रसारित होगा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, साहिब बीवी और गुलाम से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से। अब रुख करते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। इस गीत को हमने चुना है फिल्म दर्पण से। गाया है लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गीत को, इस गीत को शब्द दिए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है काला पानी।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म रजनीगंधा का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा है योगेश ने, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत भूले बिसरे गीत सुन रहे थे। हाँ, मैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने

देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12:05 और ठीक 10 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का कार्यक्रम विवरण। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। दिन में 1:05 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन। आज चर्चा का विषय रहेगा कौशल विकास योजना, ग्रामीण महिलाओं में कौशल उन्नयन, पारंपरिक पाक कला का संरक्षण, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहादत दिवस, शौर्य गाथा, सलेम विजया राघवाचार्य जयंती, साथ ही रसोई से व्यंजन बनाने की विधि और कुछ ब्यूटी टिप्स के साथ सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। दिन में चार बजे आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा सामुदायिक योग के लाभ। लघु जानकारी दी जाएगी। सतत पाक कला दिवस, न्यू इंडिया का सपना और विकसित भारत का 2047 का संकल्प। साथ ही रोजगार समाचार के साथ होगा क्विज टाइम और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धीणेरी बातें। इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता का विषय रहेगा मुर्गियों के प्रमुख रोग एवं रोकथाम के उपाय विषय पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर सहायक आचार्य वेटनरी कॉलेज बीकानेर से बातचीत करेंगे श्री राम साय हर्ष और श्री चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति रहेगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन रहेगा श्री अमित सिंह का। ये कार्यक्रम

अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा संध्या 6:40। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा का विषय रहेगा वर्षा जल भंडारण की तकनीकें, बीकानेर क्षेत्र में खरीफ सीजन की प्रमुख फसलें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, श्वेत क्रांति और मौसम की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी के साथ सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर, रात्रि 8:00 और रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर, सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गजलें। राजस्थान दर्शन आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये थी हमारे आज शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

तवां के करनो बस एत्रो ही आहे त जिए तवां बिया एप्स डाउनलोड कंदा आयो बस इएं ही प्ले स्टोर ते वञो ए सर्च वारी जगह ते टाइप कयो NEWSONAIR यानी न्यूज़ ऑन एयर ए उने के इंस्टॉल कयो इंस्टॉल कंदे ही तवां के मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ही हेट प्रसार भारती जो लोगो नजर इंदव ए तवां के उने के ओपन करनो आहे ओपन कंदा त सामू पहरी खाबे पासे लाइव रेडियो ए साजे पासे लिसन न्यूज़ लिखल नजर इंदव तवां लाइव रेडियो के क्लिक कंदा त उते एक लंबी फहरिस्त नजर इंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रन जी तवां के उते ही सबनी खां मथे सर्च रेडियो चैनल लिखल पढ़ण में इंदव सर्च में तवां जी जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ब चैनल्स नजर इंदव एक विविध भारती जयपुर यानी VBS ए बियो हवा महल छपियल नजर इंदड़ असांजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल बस अची पौतासी सही जगह ते हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तव्हां ॿुधी सघंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सब प्रोग्राम ए सिंधी प्रोग्राम ॿुधी सघंदा मंगल विस्पत ए आर्तवार जे ॾींहुं जो

0: बारी लगी दही मिंटिते ते सामिन बुधना रहो बिना नागा असंजा सिंधी प्रोग्राम पहंजे मोबाइल ते मंगल विस्पत ए आर्तवार जे दी हमें बारी लगी दही मिंटिते सिंधी प्रोग्राम सदाई गद
1: हाजिर रहो खणी अवांजो पहंजो सिंधी प्रोग्राम सबका अवल महेश कुमार कृष्णाणी जो सबनी बुधंदड़न के प्यार भरियो नमस्कार अज महीने जो ट्यों विस्पत आहे ए टे विस्पत ते असा हाजिर थिंदा आयु तवां जे लाए खणी एक वार्ता ए गडो गड गीत संगीत समय अज आहे सतत पाक कला डी माना सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हन डी के मल्हाइण जो ऐलान संयुक्त राष्ट्र महासभा पारा 21 दिसंबर 2016 ते कयो वियो हो जैन तहत हर साल 18 जून माना अजो के डी ते ही डी मल्हायो वेंदो आहे हन डी के मल्हाइण जो मकसद मानुन में हन गाल जी सुजागी आणनी आहे जैसा उनन जी नंडी नंडी आदतू जेके सुठी आदतू नथु चई वनन उनन में सुधार कयो वने जी बचल खादे जो किए इस्तेमाल करजे ए कच्चे राशन के लोकल दुकानदारन खा या किसानन खा खरीदन खपे इन सा गडो गड खादो ठाण लाए मुंद जे मुताबिक इंदड़ शयूं या राशन कम में आणियो वने हन डी के इन लाभ मल्हाईंदा आहिन जैसा प्राकृतिक जेके संसाधन आहिन उनन जी रक्षा थी सके मौसम जे मूजिब असां खाण पीअण में जेके शयूं इस्तेमाल कयूं था उहे पौष्टिक हुजन या उन्हनि जी पौष्टिकता सुरक्षित रही सघे हीउ ॾींहुं 18 जून ते सॼे विश्व में मल्हायो वेंदो आहे ऐं इन सां गॾो गॾु पर्यावरण ऐं आजीविका कीअं प्रभावित थी थी सघे उन ते बि हिन ॾींहं ते ध्यानु ॾिनो वेंदो आहे सामिन असांजे देश में सरकार पारां घणेई बीमा योजनाऊं हली रहियूं आहिनि जंहिंमें जीवन बीमा दुर्घटना बीमा पॉलिसियूं आहिनि इन ई ॾिस में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बि आहे अचो हिन बीमा योजना ते ॿुधूं था वार्ता वार्ताकार आहिनि श्री सुरेश कुमार श्री चंदानी
2: आम इंसान जे भले जी नंढी बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत में हूअं त माली दाख़िलात मतिलब त फाइनेंशियल इंक्लूज़न नारे जे प्रसार जी शुरुआत वरे 2010 खां थी ऐं इहा भारत जे मर्कज़ी बैंक यानी रिज़र्व बैंक ज़रिए कई वई फ़ाइदो वठंदड़ जे खाते में सिधो ही नाणो मोकिलणु मतिलब त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना जेका दिसंबर 2014 खां अमल में आई उहा इन ई माली दाख़िलात जो हिसो हुई माली दाख़िलात जे क़ौमी मिशन जो ई हिकु हिसो आहे आम इंसान जे भले जे वास्ते नंढी वीमा योजना जंहिंखे चवंदा आहिनि प्रधानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना आम इंसान जे कुवत में अचण वारी प्रधानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना सिर्फ़ 20 रुपयनि में ख़रीद कई वञी सघे थी हिन वीमा योजना में हिकु साल जे वीमा जी हिफ़ाज़त मिलंदी आहे हीअ शख़्सी हादसा वीमा योजना आहे हर साल सिर्फ़ 20 रुपए जे प्रीमियम मतिलब त वीमे जी क़ीमत चुकाइण ते इन जी साल दर साल वरी शुरूआति कराए सघिजे थी हिन योजना में कंहिं हादसे सां थियण वारी मौत या अपाहिज थियण जी हालति ते बि 2 लख रुपयनि जो दावो मिली सघे थो हिन योजना में हादसे जो मतिलबु आहे उहो अणॾिठो ओचितो ऐं बे इख़्तियारीअ वारो वाक़ियो जेको कंहिं ॿाहिरी दस्त दराज़ या ॾिसण में अचण वारे वसीले सां थियो हुजे हिन योजना में प्रीमियम बैंक या डाकखाने में खातेदारे जे बचत खाते में सिधो ही वासिल करणु मतिलब त ऑटो डेबिट करण जी सहूलियत जे रूप में सिर्फ़ हिकु ई किस्त में भरी वञी सघिजे थी ऐं जेका प्रीमियम चुकाइण वारे जी मञता सां पहिरियों दफ़ो इसिम नवेसी मतिलब त एनरोलमेंट जे वक़्तु वरिती वेंदी आहे हिन योजना जो इंतिज़ाम आवाम खेत्र जे उन्हनि वीमा कंपनियुनि जे तरफ़ां कयो वेंदो आहे जेके शिरकत करण वारियुनि बैंकुनि सां सहकार कंदे हिकु जहिड़ियुनि शर्तुनि ते ज़रूरी मुख़्तियारी मतिलब त अप्रूवल सां इन वीमा खे ॾियण जी पेशकश करण जे लाइ ख़्वाहिशमंद हुजनि हिन योजना में शिरकत करण वारियूं बैंकूं पंहिंजे खातेदारनि या तसदीक करण वारनि मतिलब त सब्सक्राइबरनि वास्ते अहिड़ी योजना अमल में आणण लाइ अहिड़ी ई का बि वीमा योजना हलाइण लाइ आज़ादु आहिनि

उहो हर को आम इंसान अकेले ही या गडियल मतलब त जॉइंट खातेदार जे रूप में हिन योजना में शिरकत करण वारी बैंक या डाकखाने में हिन योजना में फायदो वठी सके थो जें जी उम्र घट में घट 18 साल ऐं वध में वध 70 साल हुजे। जेकॾहिं को आम इंसान अलॻि अलॻि बैंकुनि या डाकखाननि में हिक खां वधीक खातनि जो मालिक हुजे त उहो सिर्फ़ु कंहिं हिक ई खाते में हिन योजना जो फ़ाइदो वठण जो हक़दार थींदो। हीअ वीमा योजना हर साल 1 जून खां 31 मई ताईं हलंदी आहे। इस्म नवीसी फार्म जी तारीख़ ते तस्दीक करण वारे खे इहा चूंड मतिलब त ऑप्शन हिदायत कयल फार्म में भरे ॾियणो हूंदो आहे त अॻियां जी हिदायत ताईं रुपया 20 हर साल या उहा रक़म हिन योजना वारे वीमा हिफ़ाज़त जे वरी शुरूआत लाइ जेको बि वक़्तु दर वक़्तु फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं जंहिंजी इतलाह जॾहिं बि सुधारी मतिलबु त रिवाइज़ कई वेंदी त यकदमि ॾिनी वञी सघे थी। इन तारीख़ खां पोइ देरि सां कयल इस्म नवीसी या वरी शुरूआत सालाना प्रीमियम जे चुकारे ते मुमकिन थींदी। नवां लाइक़ु बणजण वारा मतिलबु त दाख़िला वठण वारा बि पंहिंजे पाण ई वासिल करणु मतिलबु त ऑटो डेबिट करण जे वसीले सां प्रीमियम चुकाए हिन योजना सां जुड़ी सघनि था। तॾहिं बि जोखिम हिफ़ाज़त उन्हनि तस्दीक करण वारनि जे खाते मां पंहिंजो पाण ई वासिल करण जी तारीख़ खां शुरू थींदी। जेकॾहिं को बि आम इंसान कंहिं बि कारण सां हिकु दफ़ो इहा प्रीमियम चुकाइण जे करे हिन योजना खां ॿाहिरि थी वञे या न चुकाए त पोइ बि वरी ॿीहर सालाना प्रीमियम ॾेई करे वरी जुड़ी सघे थो। पर उनखे कुझु उहे शर्तूं बि पूरियूं करणियूं पवंदियूं जेके उन वक़्तु तय कयूं वञनि। तॾहिं बि जोखिम खां हिफ़ाज़त उन तस्दीक करण वारे जे खाते मां पंहिंजो पाण ई वासिल थी वञण जे तारीख़ खां शुरू थींदी। हिन योजना में भेरो वठण वारियूं बैंकूं ऐं डाकखाना ई हिन योजना जी हिकु प्रधान मतिलबु त मास्टर पॉलिसीअ ते कब्ज़ो करण वारा हूंदा आहिनि ऐं सरल ऐं तस्दीक करण वारनि जे लाइ दोस्ताना इंतज़ाम ऐं दावा निपटाइण जे सिरिश्ते खे उन्हनि बैंकुनि ऐं डाकखाननि सां सलाह मशवरो करे सरकारी ऐं ॿियनि आम वीमा कंपनियुनि आख़िरी रूप ॾेई सघंदियूं आहिनि। जिन जिन वाक्यनि जे हुअण ते ही हादसा हिफ़ाज़त वीमो ख़तमु थी वेंदो या रुकजी वेंदो उहे आहिनि 70 साल जी उमिरि थी वञणु यानी उमिरि नज़दीकी जनम ॾींहं ते थिए। वीमा खे असराइतो ठाहिण लाइ खाते में बाक़ी रक़म जी अणपूराई हुअणु या बैंक में खातो बंदि कराए छॾणु। जेकॾहिं कंहिं भातीअ हिक खां वधीक खाते में प्रीमियम जमा कराई आहे ऐं उन जी वीमा कंपनीअ गफ़लत में रहण जे करे पोइ ख़बर हासिल कई आहे त वीमा हिफ़ाज़त सिर्फ़ु कंहिं हिकु खाते जे लाइ मिली सघंदी ऐं ॿी प्रीमियम जब्त थी वेंदी। हिन योजना में बहिरो वठण वारी बैंक या डाकखाने जी इहा ज़िमेवारी हूंदी त हूअ सही सही सालाना प्रीमियम चूंड यानी ऑप्शन मूजिबि खातेदार खां हिकु ई किस्त में तय तारीख़ ते या उन खां पहिरीं हासिल करे ऐं वीमा कंपनी वटि पंहिंजो पाण ई वासिल करण जे तरीक़े सां पहुचाए। हिदायत कयल फार्म में इस्म नवीसी फार्म या पंहिंजो पाण ई वासिल करण जी हक़दारी थियण जी मञता ऐं ऐलान फार्म जेको बि खपंदो हुजे उहे हासिल करे ऐं बैंक या डाकखानो उनखे पाण वटि रोके रखे। दावे जे पैदा थियण जी हालति में सरकारी या ॿी आम वीमा कंपनी उन जी घुर करे सघे थी। सरकारी या ॿी आम वीमा कंपनी जो कंहिं बि वक़्तु उन्हनि दस्तावेज़नि खे घुरण जो हक़ महफ़ूज़ रखंदी आहे। जेका 20 रुपया प्रीमियम आहे उन में हर भातीअ ते रुपयो 1 कमीशन वापार नुमाइंदे या गुमास्ते वग़ैरह खे सिर्फ़ु नए इस्म नवीसी फार्म भराइण ते मिलंदो। हिन योजना में बहिरो वठण वारी बैंक खे 1 रुपयो हर साल इंतज़ाम मतिलबु त प्रशासन करण लाइ ॾियणु क़ाबिले थींदो आहे। ही वीमो हिफ़ाज़त तस्दीक करण वारे जे ॿिए कंहिं वीमा योजना में महफ़ूज़ रहण जे अलॻि सां मिली सघंदो आहे। प्रधानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना में कुदरती आफ़तुनि जे नतीजनि थियण वारी मौत या अपाहिज थी वञण जी हालति बि हादसे जे स्वभाव जी मञी वेंदी आहे। गॾियल यानी जॉइंट खातनि जा सभु खातेदार हिन योजना सां जुड़ी सघनि था बशर्ते जो उहे लाइक़ीअ जूं कसौटियूं पूरियूं कंदा हुजनि ऐं पंहिंजो पाण ई वासिल थियण जे रस्ते हर साल हर भाती 20 रुपयनि जी दर सां प्रीमियम खे चुकाइनि। हिन योजना

0: में भेरो वठण लाए सबनी किस्मन जा बैंक खातेदार हकदार आइन पर तंजीमुन जा खातेदार हकदार कोन आइन जेतरे कदुर हादसे जे नतीजन अस्पताल में भर्ती थियण जे खर्चन जी भरपाई जो सवाल आहे त इन जो जवाब आए त न उहे कोन मिली सघंदा खातेदार या तस्दीक करण वारे जी मौत ते इस्म नवसी फार्म में थाफियल या मुकरर कयल दावो हासिल करे सघन था थाफियल या मुकरर कयल जे बारे में न बुधाइण जी हालत में खातेदार या तस्दीक करण वारे जा कानूनी वारिस दावो दाखिल करे सघन था बीमा कयल बैंक खातेदार या तस्दीक करण वारे जे बैंक खाते में अपायज थियण जी हालत जे दावे जी रकम जमा कराई वेंदी मौत जे दावे जी रकम थाफियल या कानूनी वारिस जे बैंक खाते में मोकलाई वेंदी कें भी भातीय के आपघात करण जे मामले में उन जे कुटुंब वारन के कुछ भी न मिलंदो रेल सड़क एरी गाड़ियों जे हादसे बुडण या कें भी जुर्म में थियण वारी मौत जहड़े वाक्यन ते हादसे जी जान पुलिस के भी ॾियण ज़रूरी आहे नांग जे डसण या कें वण तां किरी पवण वगैरह जे मामलनि में नज़दीकी अस्पताल जे लेखे जोखे खे बुनियाद ठाहियो वेंदो हिन योजना में हादसा सां थियल मौत जी सिर्फ़ कंहिं दस्तावेज़ी सबूत सां ख़ातिरी करणु ज़रूरी आहे हिकु अखि हिकु हथु या हिकु पेर जे इस्तेमाल जो हमेशह लाइ नुक़सान थी वञण खे छॾे कुझु क़दुरु अपायज थियण जी हालत ते को बि फ़ाइदो कोन मिलंदो को बि वीमादार या थाफियल इंसान सिर्फ़ हिकु ई दावो करणु या दावो वठण जो हक़दार हूंदो हू हिक खां वधीक बैंकुनि खां हिक खां वधीक दावो न वठी सघंदो भारत जे जोड़ जक में ॿुधायल लोक कल्याणकारी राज्य ऐं सभिनी जो साथ ऐं सभिनी जो विकास मतिलबु वाधारे जे तरफ़ प्रधानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना ॾाढी अहमियत भरी योजना आहे
1: सामिन हींअर अभी वार्ता ॿुधी रहिया हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ते वार्ताकार हुआ श्री सुरेश कुमार श्री चंदानी सामिन सिंध जी ज़मीन संतन महात्माउनि दरवेशनि जी ज़मीन रही आहे उन्हनि संतनि में हिकु संत थिया सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज हींअर उन्हनि जो चालीहो हली रहियो आहे त अचो ॿुधूं था उन्हनि ते हीअ भक्ति रचना

सामिन हींअर अवी हल त भॼी हलो फिल्म जो हीअ गीत ॿुधी रहिया हुआ जंहिंखे गायो हो उषा मंगेशकर ऐं सतराम रोहड़ा। सामिन हाणे ॿुधो प्रोफेसर राम पंजवाणी ऐं सतराम रोहड़ा जे आवाज़ में हीअ गीत।

सतराम रोहरा ए प्रोफेसर राम पंजवानी की आवाज में अभी हिंया रही गीत बुधी रहा हुआ हिन गीत सा गड ही असांजे अज जे प्रोग्राम जो वक्त इतई पूरो तो थे वरी अवां सा गडजणी थींदी इंदड़ आतवार डी तेसी ताई महेश कुमार कृष्णाणी के दींदा इजाजत नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12:40 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़, जन जन तक।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

इस गीत को हमने चुना था फिल्म श्रीकांत से, गाया था जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार ने। गीत को लिखा था श्लोक लाल ने, संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन का एक बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को पीएम जनमन योजना के तहत वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और RAC के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को लेकर हुई है। इसके अलावा अवैध हूटर, लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेर बदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ERP प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है। इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन, बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों

0: को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां मरीजों को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद ओपीडी के साथ साथ डे केयर, फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेंटल जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSSI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग्य और जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय किया है। खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान जंग लगे टूटे हुए चाकू या किसी अन्य प्रकार के अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर दिन के 1:05 और ठीक 20 सेकंड हो चुके हैं। अब ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं श्रीमती मीनाक्षी स्वर्णकार और श्रीमती वीणा ओझा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बना

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: बने अक्सर आपा सुना हा कि हर आदमी में कोई न कोई विशेष गुण होया करे, पण कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जावे के बा प्रतिभा दुनिया रे सामने नी आ पावे।
1: और बिल्कुल, खासकर गांव री लुगाई में हुनर री कोई कमी नहीं है। कोई सिलाई में निपुण हुए तो कोई कढ़ाई है, कोई चटपटा पापड़ वड़ी और अचार बनाने में, तो कोई हाथारी कारीगरी से सुंदर मनमोहक चीजें भी बनाने में।
0: हाँ बहन, खाली हुनर होनो ही काफी नहीं हुए, बी कला ने सही दिशा, सही प्रशिक्षण और सही अवसर मिलनो भी जरूरी हुए है। और अठे सुई शुरू हुए है कौशल विकास री अहम भूमिका।
1: मैंने आज गांव की लुगाइयां खाली घर संभालन तक सिमटी नहीं है, वे अपनी कला रे दम पर आत्मनिर्भर बन रही है, कुटुंब रे आमदनी बढ़ा रही है और समाज में अपनी अलग ठोड़ भी बना रही है।
0: बन्या कौशल विकास योजना में लुगाइयां ने खाली प्रशिक्षण ही नहीं देवे, साथ ही बारो हौसलो भी बढ़ावे है। जब एक लुगाई अपनी कला ने पूरो जान पावे, पछे तो बीरे सुपना ने नुआ पंख मिल जावे है।
1: आज घना सारा प्रशिक्षण कार्यक्रम रे माध्यम सु लुगाइयां सिलाई, सजनो सवरनो, कंप्यूटर, खाद्य प्रशिक्षण प्रसंस्करण, डेयरी, हाथारी कारीगरी और डिजिटल साक्षरता और खुद रे रोजगार सु जुड़ियोड़े कई क्षेत्र में प्रशिक्षित हो रही है।
0: और इनरो परिणाम भी देखने सामी आ रियो है, जकी लुगाइयां आपरे हाथारी कारीगरी ने खाली शौक समझती ही आज बोई शौक भी आने रोजगार देर आमदनी रो साधन बन गयो है।
1: मने एक बात बहुत जो अच्छी लागे है कि जद एक लुगाई आपरे बूते आत्मनिर्भर बने हैं, बीरो लाभ खाली बाही नहीं मिले हैं, बल्कि बीरे कुटुंब भी मजबूत बने हैं और साथ ही टाबरा री पढ़ाई में भी बनावन सु हुए है, जिके सु पूरे गांव में सकारात्मक बदलाव दिखन लागे हैं।
0: सही बात है, एक मजबूत लुगाई खाली आपरो भविष्य नहीं बदले, बा आवन वाली पीढ़ियां रो भी भविष्य सुधार करे।
1: बेनिया आज रे भगत स्वयं सहायता समूह भी लुगाइयां वास्तर एक उम्मीद री नवी किरण है और अरबी ने बाजार तक पहुंचा रिया है।
0: पहला गांव री लुगाइयां री कारीगरी घर री चौखट तक सिमटोड़ी रहती, बा कला आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रदर्शनी आरे पांड जगह जगह पहुंच रही है।
1: हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि अबे लुगाया नौकरी ढूंढन रे साथे साथे दूजा ने रोजगार देवन वाली भी बन रही है।
0: और बेनिया कौशल विकास रो औरत कोई काम सीखन रो नहीं हुए, बीरो औरत हुए आपारे माए छुपड़ी कारीगरी ने पहचान बिना निखारनो और पूरे आत्मविश्वास रे साथे आगे बढ़ावनो हुए।

0: पहनिया जे आपारे मायने भी कोई कला कोई प्रतिभा या कोई हुनर हुए तो बीने जाने और आगे बढ़ावन रो गिरजो बढ़ावन रो काम भी करते रहना चाहिए।
1: आज रे जग माए हर लुगाई ने अणमाप संभावनाएं होया करे तो जरूरत भी आने जानर आगे बढ़ाउन रही है।
0: और ओ ही कौशल विकास रो सबसे सुंदर उद्देश्य है कि लुगाया ने आत्मनिर्भर बनानो आत्मविश्वासी बनानो और भी आगे सु आगे तक कामगीर बेसु भी भरी लुगाया बनानो हुए हैं।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बनिया इतिहास में कई नाम ऐसा होया है जका खाली किताबा रे पन्ना में ही छपया नहीं, बल्कि बे लोगा रे दिला में हमेशा जीता जागता रहवे है। इसो ही एक नाम है झांसी री रानी लक्ष्मी बाई रो।
4: एकदम सही, साहस, स्वाभिमान और आपरी जन्मभूमि रे वास्ते निछावर हुवन रो नाम है रानी लक्ष्मी बाई। बिया रो जीवन हर भारतीय और विशेषकर महिलाओं रे वास्ते प्रेरणा रो स्त्रोत है।
3: बेन्या 18 जून ने रानी लक्ष्मी बाई रो स्वाभिमान रे साथे बलिदान रो दिन मनायो जावे है। ओ दिन आपने बी वीरांगना री याद दिरावे जकी अंग्रेजी हुकूमत री सेना रे सामी झुकन रे बजाय आपरे देश और स्वाभिमान रे वास्ते युद्ध भूमि में युद्ध करता थका मरने ने मंगल मान्यो।
4: रानी लक्ष्मी बाई रो जन्म वाराणसी में हुयो। बालपणे में बारो नाम मणिकर्णिका हो, से लाडसू बाने मनु कहया करता। बालपणे सुही बाने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में विशेष रुचि ही।
3: सुनियो है कि मनु आपरी दूसरी सहेलियां दाई कपड़े री गुड्डा गुड्डी सुनी खेलती। खेलन वाले समय में बा तलवारबाजी और घोड़े री सवारी सीखती ही। सियात नियति बाने इतिहास री सबसु वीर महिलावां में भेली करण वास्ते ही जन्म दियो हो।
4: ब्याव रे बाद बिया ने झांसी री रानी लक्ष्मी बाई कहवन लाग गया और युद्ध में जद अंग्रेजा झांसी ने आपरे

0: कार में लेवण रो मनसूबो बनायो जद रानी आपरे पूरे आत्मविश्वासू अंग्रेजारी सेना रो विरोध करियो हो।
1: और फिर आयो बरस 1857 रो स्वतंत्रता संग्राम रो। झांसी री धरती पर जुदरा नगाड़ा गुंजन लाग गया हा। रानी लक्ष्मीबाई आपरे मुंह बोलियो बेटे दामोदर राव ने आपरी कमर पर बांध घोड़े ऊपर चढ़र लड़ाई वास्ते युद्ध भूमि माए डंको बजा दियो।
0: बेना आ बात खाली एक जुदरी नहीं है, आ बात आखे हिंदुस्तान रे स्वाभिमान और स्वतंत्रता री लड़ाई दी है। रानी आपरे पूरे जोश और होशु अंग्रेजा सु लड़ी।
1: लक्ष्मीबाई रे बारे में देश री मान्योड़ी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान आ ओली मांडी है, जकी आज भी हर भारतीय रे हिवड़े में जोश भरे है। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी ही।
0: बेना 18 जून 1858 ने ग्वालियर रे खन्ने युद्ध करता रानी लक्ष्मीबाई वीर गति ने प्राप्त हुई, पण बारी हिम्मत अमर हुईगी।
1: तो बेने रानी लक्ष्मीबाई री कहानी आपने आ बात सिखावे कि हिम्मत री उमर नी हिम्मत कदी उमर नहीं देखे, साहस परिस्थितियां ना देखे, बातों आपरी जलम भूमरे वास्ते त्याग अरमर मिटनो सिखावे है।
0: आज जद आपा बियारे बलिदान रे दिन ने याद करा हां, तो आ बात खाली इतिहास ने याद करन री नहीं है, बल्कि बारे साहस आत्मविश्वास और स्वाभिमान ने आपा रे जीवन में उतारन रो अवसर भी है।
1: रानी लक्ष्मीबाई आ साबित कर दियो कि लुगाई खाली ममता और करुणा री मूरत नहीं हुए, जरूरत पड़िया बा रणचंडी बन काल रे कपाल माथे पराक्रम री मिसाल भी बन सके है। तो आओ बेन्या ई शौर्य दिन पर रानी लक्ष्मीबाई ने श्रद्धापूर्वक निमन करता थका साहस आत्मविश्वास और देश प्रेम री शिक्षा लेवा।

0: गायकों के लोक बाने दक्षिण भारत रो शेर केवण लाग गया था और कारण बारो आभा मंडल साची बात हुंस और हटोटी रे पाण सूरज दिया चमक रियो हो।
1: सेलम विजय राघवाचार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रे शुरुआती नेताओं में एक हा और देश माए राष्ट्रभक्ति चेतनारी अलग जगाउन में वे बहुत महत्व काम करिया।
0: और कोई भी देश री ताकत बारे संसाधना रे साथे साथे इसा महत्व मिनखासु आवे जकारे मन में देश प्रेम और समाज री सेवा हिलोरा लेमती हुए है। विजय राघवाचार्य रो जीवन अपाने आई सी

अभी आप कार्यक्रम घर आंगन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिडडे न्यूज और फिर होंगे दोपहर समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: बेनिया बातें तो घनी है आपसु करण खातर, लेकिन कहीं करा अब समय भी इजाजत नहीं दे रही है, तो दीजिए इजाजत आपरी सखी मीनाक्षी स्वर्णकार।
1: और मैं हूँ वीणा ओझा ने, तो स्वीकार करो बेना, घना घना राम राम, राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी

0: योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के

0: प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। दिन के 2:30 और ठीक 10 सेकेंड हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आइए सुनते हैं शान, श्रेया घोषाल और सुरेश वाडेकर को इस गीत में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म एक विवाह ऐसा भी से। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं फिल्म दो लफ्जों की कहानी का ये गीत। इस गीत को गाया है अरमान मलिक ने, गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत से सवारा है अरमान मलिक ने।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आइए सुनते हैं फिल्म आशिकी का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अनुराधा पौटवाल ने। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आइए सुनते हैं फिल्म आदि पुरुष का ये गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया है अजय और अतुल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा यहीं पर संपन्न होती है। दिन में 4 बजे अपने विशेष कार्यक्रम के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स से। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है, क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं, और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है, जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत

0: दोस्त होंगे? क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देखे कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
1: देखो, जाना तो काफी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
0: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
1: हाँ, यस, मैं मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफी शरारी था, मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो, काफी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
0: अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? क्योंकि आर्मी का तो काम ही यही आर्म्ड फोर्सेस का कि आपसे, आप में से एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार, तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
1: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोस्टमेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम मिलाते हैं।
0: वाह, क्या बात है, तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहां, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
1: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहां से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी, और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम।

0: 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूं शायद वो महसूस न कर पाता अगर यहां ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह, क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दो दिन तीन दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे, तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूं, रोया नहीं हूं, बट देख के ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह, क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की है, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी, कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है, तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के, जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई,
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है, एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे, एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
1: जी,
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना, और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है, और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात, तो और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूंगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा इंडिया जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट येस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने तो कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती, और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर

0: होता था यहां के हम सिकंदर, उस गाने पे तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
1: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कवनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें

0: तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए, यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 1997 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोस्टमेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल

0: दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी, पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
1: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहां साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
0: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर रहता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है, हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस

0: और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, स्प्रिट कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीजों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉस, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की। आपके मिशन के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है। एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी। तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
2: सो स्वीट।
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, कि मैं तो अवसर था वो, शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
2: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई। और जिंदगी उस

0: के बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊंगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, माय वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में। पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
1: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है, जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन में काफी कारगर साबित होती है,
0: बिल्कुल
1: नित्य प्रति कार्य करती रहती है। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को, जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
0: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहां पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
1: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
0: बहुत याद आता है, ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ
1: जाता है। क्या बात है, यानी कि वो पल जिसमें उन्होंने डांस किया और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूंगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफकोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। एनडीए में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को भी कहता हूं। मेरा बेटा भी हरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूं कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
0: जी।
1: मैं अपने नाम को कर्नल केवीएस तंवर वीएसएम लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए केपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे

0: सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती था, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
0: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
1: जी।
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आए और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहां उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवर्टिक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवर्टिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सास से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत

नमस्कार दोस्तों, शाम के 5:05 हो चुके हैं और सूरज देवता धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। शहर के चौराहों पर चाय की थड़ियों पर रौनकें बढ़ने लगी है और इस सुनहरी शाम में मीठी मीठी हवाओं के बीच वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की धड़कन युवाने का। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दिन भर की भागदौड़ के बाद आप थोड़ा सुकून महसूस कर रहे होंगे। आपकी इस शाम को और ज्यादा सुहाना बनाने के लिए और ढेर सारी बातें करने के लिए माइक्रोफोन के इस तरफ आ चुका हूं मैं, आपका दोस्त रिपुदमन सिंह। दोस्तों आपसे बातें करने से पहले मैं कुछ सोच रहा था, आजकल हम युवाओं की जिंदगी कैसे हो गई है ना। हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास फ्रेंड्स है, फॉलोवर्स है, पर हम दुनिया से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक अजीब सा खालीपन भी है, एक अजीब सी थकान है जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी है। इसी बात में मुझे अपने एक दोस्त रजत का एक किस्सा याद आता है।

रजत बिल्कुल हमारे जैसा ही है, एक आईटी कंपनी में काम करता है, दिन भर लैपटॉप के सामने उंगलियां चलाता रहता है, रात में मोबाइल की नीली रोशनी में आंखें गड़ाए बैठा रहता है। कुछ महीने पहले की बात है कि रजत की हालत बहुत बिगड़ने लगी थी, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और बेवक्त तनाव उसके दिमाग में रहता था, और उसने जिम भी ज्वाइन किया, 3 दिन बाद छोड़ दिया। उसने घर में कसरत करने की भी सोची पर अलार्म बंद करके सोने की आदत के वो भी भेंट चढ़ गई। एक दिन रजत के दादाजी, जो कि उम्र के 75वें साल में भी एकदम सीधा तन कर चलते हैं, उन्होंने रजत की यह हालत देखी। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, उसे डांट नहीं लगाई, बस रात को कहा कि बेटा कल सुबह 6 बजे तैयार हो जाना, मेरे साथ चलना है। रजत को लगा कि शायद दादाजी कोई डॉक्टर के पास जाने वाले होंगे। उसने सुबह अनमने मन से नींद में झूमते हुए दादाजी के साथ गाड़ी में बैठ गया। दादाजी कोई उसे अस्पताल या बाजार नहीं लेके गए, बल्कि अपने बीकानेर के पब्लिक पार्क ले आए। सुबह के उस ठंडी हवा और ओस की वो मोतियों जैसी बूंद चमक देखकर रजत हैरान रह गया। उसने खुले मैदान के अंदर देखा कि पेड़ की छांव के नीचे 40-50 लोग इकट्ठा हो रखे हैं। उसमें लड़के लड़कियां, कुछ व्यापारी, कुछ बुजुर्ग और कुछ महिलाएं भी थी, जो अपनी अपनी चटाई बिछाए वहां बैठे थे। दादाजी भी वहां चटाई बिछाकर बैठ गए और रजत उनके पास बैठ गया। रजत ने सोचा कि यार ये क्या बोरिंग काम करने ले आए दादाजी सुबह सुबह। लेकिन सामने खड़े एक व्यक्ति ने निर्देश देना शुरू किया। सबने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तो सोचिए दोस्तों कि जब 50 लोग एक साथ गहरी सांस लेते हैं, एक ही सुर में जब ओम का उच्चारण करते हैं, जब पूरी भीड़ एक साथ वो ध्वनि पैदा करती है, तो रजत ने मुझे बताया कि उसे ऐसा लगा कि उस वक्त शरीर के हर एक रेशे से मैं ऊर्जा दौड़ गई हो। वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो एक कंपन था, एक वाइब्रेशन था, जो पल भर के अंदर उसके दिमाग का सारा तनाव उसने सोख लिया। उसके बाद उस समूह ने काफी सारे शारीरिक आसन किए। जब उन सब ने ताड़ासन किया तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की तरफ कोई जंगल खींचा चला जा रहा हो। और मजेदार की बात तो तब हुई जब वृक्षासन करते हुए रजत का बैलेंस बिगड़ने लगा और वो गिरने लगा। उसे लगा कि सब लोग हंसेंगे और उसे शर्मिंदगी होगी, लेकिन उसने देखा कि बगल में खड़ा एक 20 साल का लड़का भी लड़खड़ा रहा है। दूसरी तरफ एक अंकल भी मुस्कुराकर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कोई जज नहीं कर रहा था, ना कोई कंपटीशन था, वहां सिर्फ एक दूसरे का साथ था। उस दिन रजत ने जाना कि जब आप समूह के साथ कुछ करते हैं, मुस्कुराते हुए पसीना बहाते हैं, तो वो कोई टास्क नहीं लगता, वो काम नहीं लगता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। जी हाँ, मैं आज इसी चमत्कार की बात कर रहा हूँ, कोई किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि एक जादू है जिसे हम सामुदायिक योग कहते हैं, यानी कि एक समूह के साथ मिलकर योग करना। आप कहेंगे रिपु भाई ये तो हम कमरे में भी कर सकते हैं, कोई वीडियो चलाकर भी कर सकते हैं, इसमें क्या नई बात है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अकेले कमरे में जो चीज की जाती है वो रूटीन या डिसिप्लिन लगती है। वही चीज जब 10-20 लोगों के साथ खुले आसमान के नीचे करी जाती है तो वो एक थेरेपी बन जाती है। इसी थेरेपी की आगे मैं आपको काफी फायदे बताऊंगा, उससे पहले आपके लिए एक म्यूजिकल थेरेपी लेकर आया हूं जो आपको नाचने पर मजबूर कर देगी।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
5: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी क्विज सेगमेंट से दो प्रश्न मेरे सामने हैं कि हाल ही में बेहतरीन और स्वच्छ भोजन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूं कि हाल ही में बेहतरीन और स्वच्छ भोजन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। दूसरा सवाल है, वर्ष 2026 में लीलाधारी महादेव पशु मेले का भव्य आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ था। जैसे कि दोस्तों, मैं सामुदायिक योग की बात कर रहा था, उसमें एक थेरेपी की बात कर रहा था, तो उसके फायदों के बारे में अब अपन चर्चा करते हैं। और पहला और सबसे बढ़िया फायदा है कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बनती है। हम युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम मोटिवेट होकर अलार्म तो लगा लेते हैं लेकिन सुबह वो स्नूज बटन हमारी सारी प्रेरणा खो देता है। लेकिन जब सामुदायिक योग करते हैं तो आपको पता है कि आपके पार्क में आपके 5 दोस्त, आपके मोहल्ले के वो दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपको बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने समूह के लिए बिस्तर छोड़ते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव पीयर प्रेशर यानी सकारात्मक दबाव। और दूसरा है कि मन की शांति और अकेलापन दूर। अकेलापन आजकल बहुत बड़ी बीमारी बन गया है। जब आप अपने

हमारे युवा इस देसी सस्टेनेबिलिटी तरीके से थोड़ा दूर भाग रही है। आज हमें फ़ोन में कई ऐप्स हैं जो बटन दबाते ही दुनिया की कोई भी डिश हमारे घर तक आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी कैफ़े में जब आधा खाना खाकर छोड़ आते हैं या घर पर ऑनलाइन मंगाया हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देते हैं तो आप असल में क्या फेंक रहे होते हैं? यूएन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में इंसान के खाने के लिए जितना भोजन पैदा होता है उससे लगभग एक तिहाई हिस्सा बर्बाद हो जाता है। एक तरफ करोड़ों लोग भूखे पेट सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ लाखों टन खाना कूड़े में चला जाता है। जब आप अपनी प्लेट से खाना फेंकते हैं तो आप सिर्फ वो डिश नहीं फेंक रहे होते हैं, आप उस किसान की महीनों की मेहनत, खेत में लगा सैकड़ों लीटर पानी और आप तक पहुँचने में लगी ऊर्जा को, सब कुछ को एक झटके में कूड़े में फेंक देते हैं। सतत पाक कला दिवस हमें यही बात याद दिलाता है कि हमें खाने की आदत को, इस आदतों को सीधा असर हम पूरी दुनिया पर पड़ता है। जो जिस तरीके से हम खाने को खाते हैं या उसके साथ बर्ताव करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो एक युवा के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल से तीन काम हैं वो हम कर सकते हैं। लोकल को वोकल बनाइए, जो हमारे इलाके में उगता है, जो सीजनल है, उसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इससे लोकल किसानों को फ़ायदा होगा और ट्रांसपोर्टेशन में प्रदूषण कम होगा और जीरो वेस्टेज। पुरानी कहावत है ना कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। बस इसी को फंडा बना लो, जिंदगी का रूल बना लो और सम्मान करो जो खाना बनाते हैं, जो खेत में उगाते हैं, उन सभी इंसानों की मेहनत की इज्जत करो। तो मेरे दोस्त, अगली बार जब भी आप अपनी फेवरेट डिश खाएं तो उसका स्वाद लेते हुए साथ में एक सेकंड के लिए ज़रूर सोचें कि ये खाना जिस तरीके से आप तक पहुंचा है उसकी इज्जत ज़रूर करें। तो चलते चलते अब वक्त हो चला है आपके कुछ सेगमेंट के प्रश्नों के जवाब देने का। जो प्रश्न मैंने आपसे अभी पूछे थे कि हाल ही में बेहतरीन और सबसे स्वच्छ भोजन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? बिल्कुल आपनों बीकानेर ही है इमें। और दूसरा सवाल है, वर्ष 2026 में लीलाधारी महादेव पशु मेले का भव्य आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो इसका आंसर है सिरोही। और साथ ही में अब चलते चलते आपको रोजगार समाचार की भी जानकारी दे देता हूं कि अब RPSC ने APO सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए भर्ती का निविदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी डेट 20 जून 2026 से शुरू हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि है 19 जुलाई 2026 की। तो ये वकील बनने जा रहे सभी युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूनतम उम्र 21 साल रहेगी और अधिकतम उम्र 40 की रहेगी। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है। समय बहुत कम था पर आपने खूब सारी बातें की। तो अब आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।

यथा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कार्यक्रम धीणेरी बातियाँ। कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता मुर्गियों के प्रमुख रोग एवं रोकथाम के उपाय विषय पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ सहायक आचार्य वेटरनरी कॉलेज बीकानेर से बातचीत। कार्यक्रम में सहभागिता है श्री राम सहाय हर्ष और श्री चंद्रशेखर जोशी की। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं श्रीमती बरखा थानवी व्यास। संयोजन श्री अमित सिंह का है।

0: आकाशवाणी कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया काकी सा कार्यक्रम सुन सु मिल पशुपालन सुरी समस्या का समाधान।
1: इस कार्यक्रम की प्रायोजित है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
2: धीनेरी बातिया धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
3: बंशी भाई रा
2: मोकला मोकला
3: राम राम
2: राम राम भाई बंशी भाई राम राम
3: राम राम हरखू भाई राम राम।
2: देखो सिंजा पड़ी री बेला है और लठ हाथ में लेवड़ो और गमछो कांधे पर टांगेड़ो लगे कठी घूम रहे हो।
3: थे तो हरखू भाई सारी बात ना जानो हो
2: जानो क्यों माथे में पसीनो टपक रही है पूछ रही हो बार बार है कई बात है।
3: देखो सा सुबेरी बेड़ा और संजेरी बेड़ा
2: हाँ
3: यानी बी टाइम रा आदमी ने थोड़ा टहलनो चाहिए ताकि उन्हें सु कही है कि शरीर है जो निरोग रहे।
2: बिल्कुल सा देखो जे सुबह री बेला है तो भी आपने घूमना चाहिए और साथ है साथ जिका भी आपा हड़का फुलका व्यायाम है योग है वो भी आपा कर लेवा तो शरीर रहने आपा निरोगो रहे।
3: इन वास्तरी क्या करे कि भाई जिको करे योग उनरो शरीर रहे निरोग
2: निरोग। बिल्कुल सा देखो सुबह उठते ही साथे कहीं है आपा देखो तैयार हो जावा और अनुलोम विलोम बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है अगर बिने भी आपा कर लेवानी तो भी आप निरोग रहो सा। और आप अगर घर से बाहर निकल और 2-3 किलोमीटर घूम लियो तो और ही सोने में सुहागे दी बात है सा।
3: भाई जितो करो नहीं आप शरीर ने दूरो
2: हाँ
3: भाई काम सु करा एक तो
2: हाँ।
3: और एक अपना अगर योग रे माध्यम सु बो जो को दूरो को नहीं रहना होवे वो
2: हाँ।
3: उल्टे रो जो कही है कि शरीर ने सोरो रखने रो योग
2: हाँ। तो देखो आपने जीवन रे माने एक आदत डालनी है कि आपने सुबह और सिंजारी बेला घूमने रो जो बखत है वो निकालना है और हल्का फुल्का जिका व्यायाम है वे करना है। जे आप कोई रोग विशेष से जुड़ेड़ा हो तो आप जिका भी विशेषज्ञ है बिया सलाह ले पर आपने योग करना है।
3: कुल मिलार बात आई है कि शरीर जो है नहीं उन्होंने कोई ना कोई काम रमाने लगाएड़ो रखो।
2: हाँ देखो शरीर सु पसीनो निकलना चाहिए पसीने में मेहनत छुपी है
3: और मेहनत सुई देखो सा मिले धन।
2: हाँ, बिल्कुल सा तो मुंडा बा बताओ योग रे साथे कि आज आप चर्चा किन विषय पर कर सा।
3: लोग बाग कागज या तो घनकरा लिखे है कोई लिखे है कि भाई और रानी खेत रोग कहीं हुए उन बाबत जानकारी दो और एक फाउल पॉक्स चेचक रोग
2: देखो बर्ड फ्लू रे बारे में आयो है।
3: अच्छा
2: राम जी लिखी है मुर्गिया में होने वाला रोग
3: मुर्गिया रा प्रमुख रोग अरे रोक थाम रा उपाय।
2: वाह वाह ठीक रस्तो बतायो आज विशेषज्ञ जी का पता नहीं हाँ। नाम आपने बता दूं पर चौपाल में पधारे है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे है सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है आपने में करा।
3: राम राम सा
4: राम राम हरकू भाई राम राम बंसी भाई।
3: देखो सा आपा कर सा डॉक्टर साहब सु प्रसन्न और डॉक्टर साहब जब जवाब देसी नहीं तना अपना जका पशुपालक भाई नहीं बे होसी प्रसन्न।
2: बिल्कुल
3: आमार पूछू सा तो से हूँ पहली डॉक्टर साहब मारा पशुपालक ने आप आ बताओ कि मुर्गियां माए होने वाला प्रमुख रोग है वे किसे किसे होया करे।
4: हाँ बंसी भाई प्रमुख रोग अपने मुर्गियां में मेनली 3 कारक होया करे चाहे मुर्गियां हो पशु हो पक्षी हो क्या तो वायरस हुए के बैक्टीरिया हुए के प्रोटोजोआ पेरासाइट हुए
3: जी।
4: तो वायरस होने वाली मेन पहले मैं बताऊं आपने बीमारियां सब बड़ी बीमारी बर्ड फ्लू जो
3: अच्छा।
4: पूरा वर्ल्ड पूरा राजस्थानी नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रसित है बर्ड फ्लू ला रहे 2-4 बार हुए तो लाखों लाखों की संख्या में अपन मुर्गियां मारनी पड़ी ताकि मनुष्य में वो रोग नहीं पहुंचे
3: जी।
4: दूसरो रानी खेत डिजीज है वो भी बहुत खतरनाक छूतरी बीमारी। तीसरो फाउल पॉक्स है। चौथो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है जो अपने बार ला रहे कोरोना बीमारी हुई सेम बिशर बारी बा बीमारी है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहवे बा मुर्गिया में हो जावे। चौथी मर्क्स डिजीज आपने कैंसर हुआ है मनुष्य आदमिया में बस सेम ट्यूमर हो जावे मर्क्स डिजीज में। पांचवी गंबोरो डिजीज है लीची रोग है ये सब वायरस होने वाला है। दूसरा बैक्टीरिया में होने वाला रोग है इन्फेक्शियस कोराइजा है फाउल कोलेरा है हेजो हुए आपने जी हाँ फाउल कोलेरा हुआ है पुलोरम डिजीज है ई कोलाई है फाउल टाइफाइड है अपने टाइफाइड हुआ जी यहाँ भी टाइफाइड हुआ है तो ये सब जीवाणुओं बैक्टीरिया में होने वाला बीमारियां हैं
3: जी।
4: तीसरी परजीवों पेरासाइट जो चीचड़ है टिक है माइट है कोक्सीडियोसिस है एस्परजिलोसिस है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है ये सब प्रोटोजोआ या पेरासाइटों होने वाली ये प्रमुख बीमारियां मुर्गियों में हुए।
2: वाह सर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आप घनकरा रोग बताए पर आज आप कुछ मुख्य मुख्य रोग पर चर्चा कर सा

0: સૌ પહેલા ડોક્ટર સાહેબ મેં આપ સૌ જાણવા ચાહવા કે રાણીખેત રોગના કારણ લક્ષણ
1: उत्तराखंड में तो सब पहले बठे भारत में डिजीज आई आ बीमारी आई
2: अच्छा।
1: इरो नाम रानीखेत भी जगह रे हिसाब रानीखेत डिजीज नाम पड़ियो। दूसरो नाम ये बीमारी रो न्यूकैसल डिजीज भी कहवा। न्यूकैसल एक जगह है इंग्लैंड में।
2: अच्छा।
1: तो भारत में रानीखेत में आई लेकिन सब पहले महामारी रे रूप बठे न्यूकैसल में आई। इन इरो दूसरो नाम न्यूकैसल डिजीज भी राखोड़ो है। तो इमें कहीं है कि सब उम्र री मुर्गिया में हो सके, छोटा चूजा ले बूढ़ी भी मुर्गी तक आ बीमारी हो सके। टर्की में भी बीत रहूं समान रूप हुए। इरो कारक के एक मिक्सो वायरस हुआ करे भी वायरस री वजह आ हुए। इमें इरा मेन लक्षण आ चार तरह री हुए। पहलो विरुलेंट फार्म है, दूसरो मिसोजेनिक फार्म है, तीसरो लेंटोजेनिक फार्म है और चौथो एसिम्टोमेटिक। तो पहलो विरुलेंट फार्म इन एशियन टाइप रानीखेत डिजीज भी कहवे। आ बहुत खतरनाक है। इमें 100% 100% मृत्यु निश्चित है। इमें मरे ही मरे मुर्गी और आ 3-4 दिन तक रहवे और बीर बाद में कदे कदे एक ही दिन में सगली मुर्गिया मर जावे। इमें लक्षण तेज बुखार हुए और मुर्गिया ने सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुए। मुंह खोल मुर्गिया भी में सांस लेने की कोशिश करे और अंडा उत्पादन सब भी में कम हो जावे। दूसरी है मिसोजेनिक फार्म, बीन अमेरिकन टाइप किया करे, बी में मृत्यु थोड़ी कम हुए, कम खतरनाक है, 5-20% तक ही मृत्यु हुए, सांस लेने में कठिनाई हुए, हरिया रंगरा बी में दस्त हुए तो अंडा उत्पादन में कमी तो बात ठीक हो सके, 10-20% तक भी मृत्यु हुए, 80% मुर्गिया बी में ठीक हो जावे। तीसरी है लेंटोजेनिक, इमें मृत्यु दर बहुत कम है, वो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुए लेकिन अंडा उत्पादन में भी कमी हुए लेकिन वह ठीक हो जावे। चौथी एसिम्टोमेटिक भी लक्षण दिखे कोनी।
2: अच्छा।
1: पर बड़ी मजेदार बात है कि इमें लक्षण कौन दिखे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे।
2: अच्छा।
1: तो बीम अपन ठा पड़े के ओ रानीखेतरो लेंटोजेनिक है
2: रोग है,
1: एसिम्टोमेटिक सिम्टम कोने आ रहा है। इमें बी में खांसी आवे, उल्टी आवे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे तो अपन ठा पड़ जावे आ बीमारी, कदे कदे टांगे ने बीच में माथो देर भी बैठ जावे। तो यूं अपन ठा पड़े की आ एसिम्टोमेटिक रानीखेत डिजीज है। तो ई रोग रो कोई उपचार नहीं है, जो मेन जो विरुलेंट फॉर्म में बतायो एशियन टाइप बीरो कोई उपचार नहीं है, बाकी तीनों फॉर्म रो थोड़ा उपचार है, ठीक हो जावे। वैक्सीनेशन इमें जरूर कराना चाहिए। ब्रॉयलर और लेयर में तो 7वें दिन पर जन्मे जीव, 7वें दिन पर, 28वें दिन पर और 10 सप्ताह पर।
2: अच्छा।
1: 3 बार वैक्सीनेशन कराना जरूरी है और ब्रॉयलर में सिर्फ 7 दिन पर वैक्सीन करा दो, वो भी काम चल जाए।
2: तो डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करा कि भाई आपनी जी की जानकारी आप दी उनासु आपना जगह पशुपालक भाई है लाभ उठा सी। अब मैं बात करा डॉक्टर साहब एक रोग आप बतायो बर्ड फ्लू, जिके सु देखो साहब भारत ही नहीं पूरा जो विश्व है वो भी कहीं है कि इनसु प्रभावित हुई और परेशान हुई। आप बताओ कि इन बर्ड फ्लू रोग रा लक्षण कारण और उनरा रोकथाम रा कई उपाय।
1: जी, बर्ड फ्लू भी एक वायरस होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस। आपने कोविड में भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही हो। इमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, बी वो बर्ड फ्लू बीमारी फैले। आ भी बहुत खतरनाक, बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इमें भी जी रानीखेत में बताई 100% मृत्यु निश्चित। इरो कोई उपचार नहीं है। इमें मुर्गिया ने मार खड्डे में या कोई सुरक्षित रूप में निस्तारित करनी पड़े। और रोग मुर्गिया में और टर्की में मुख्य रूप हुए। ई रोग रा लक्षण है कि अचानक ही खूब संख्या में एक ही दिन में एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे। अपन समझ नहीं आवे यार एक ही दम ही मुर्गियां क्या मरी, पहले कोई लक्षण दिखे को नहीं, एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे। पक्षी सुस्त और बिल्कुल खानो पीनो बंद करे और मरना शुरू हो, तो आ स्थिति फार्म में हो जावे। बर्ड फ्लू रो पक्षी में कहीं सूजन भी आ जावे, जुकाम हो जावे, नाक आंख आमू सब वो इस तरह शुरू हो जावे। तो ये सब लक्षण इमो हो जावे। इरो उपचार को नहीं बिल्कुल भी और मरना शुरू हो जावे। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वैक्सीनेशन इरो उपचार है। वैक्सीनेशन आपने 7-10 दिन में करवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेर।
3: बिल्कुल नुकसान है वैसा। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँ हाँ कि गंबोरो रोग कहीं है और इरा उपचार और बचाव क्या कर सका।
1: गंबोरो रोग इरे साइंटिस्ट है एक बारो नाम हो जूलियन गंबोरो।
2: अच्छा।
1: बे ई रोग ने शुरू शुरू में स्टार्टिंग में खोज करी तो बारे नाम वो गंबोरो रोग नाम पड़ियो। तो मैं साइंटिस्ट री वजह ई बीमारी रो नाम गंबोरो। आ भयंकर छूतदार बीमारी है, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी में, दूसरी तीसरी में और चूजा में ज्यादा हुए छोटी उम्र में, सामने 2 सप्ताह लेर 15

0: तारी उम्र में वो रोग हुए, और तीसरा सप्तम लेर सातवें सप्ताह में लक्षण बहुत तेजी हुआ हुआ भी में 3 और 6 सप्ताह की आयु में इनमें एकदम रोग लक्षण जो हुए वे तेजी में प्रकट हुआ है। इनमें पक्षी सुस्त हो जावे, भूख री कमी हो जाए, भूख प्यास कम लागे, मारो उत्पादन कम हो जावे, पानी री कमी हो जावे शरीर में, ऐसा लक्षण पंख इमें गंबोरों में पंख बीरा अव्यवस्थित हो जावे थोड़ा,
1: अच्छा
0: पंख उड़ने में चालने में बीरा बड़ी तकलीफ हो, पगा में लकवा जिसी स्थिति भी आ जावे। तो है आप पशु चिकित्सक के जाओ या राजूवास आपने नंबर है टोल फ्री बट है बात करो, इरो इलाज है, पोल्ट्री फार्म भी राजूवास रो है बट है भी आप संपर्क कर सके किसान भाई, तो इरो इलाज है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, 4 वैक्सीन इरे वास्ते है। पहली माइल्ड वैक्सीन है, कम लक्षण आवे तो माइल्ड मतलब माइल्ड वैक्सीन लागू हुआ है, इंटरमीडिएट वैक्सीन हुआ है, और इरे अलावा इन्वेजिव इंटरवेसिव हुआ है लेयर और ब्रॉयलर के लिए इन्वेजिव इंटरमीडिएट वैक्सीन, और चौथी हुआ हॉट स्ट्रेन वैक्सीन, जो अगर एरिया में आपने प्रोन हुए कई एरिया ये बीमारी के वास्ते प्रोन हुए तो भी में हॉट स्ट्रेन वैक्सीन जरूरी हुआ है। 4 तरह की वैक्सीन कर इरो बचाव कर सका।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके से समझावे नी, तो सवाल भी आपने बढ़िया बढ़िया दिमाग रे मायने आ जावे। तो अगलो सवाल है डॉक्टर साहब आपसे हो है कि फाउल पॉक्स या चेचक रोग रा लक्षण कई होया करे और इन बाबत टीकाकरण की कई भूमिका हो, इन बाबत भी जानकारी दो सा।
0: जी हाँ चेचक आप नाम बताओ, पॉक्स पॉक्स वायरस हूँ वायरा नाम में ही आ रही होगी पॉक्स, तो पॉक्स वायरस है चेचक जी में छोटी छोटी पुणसियां, जी मनुष्य में चेचक हुआ तो फुणसियां हो जाए जी, इनमें मुर्गी में छोटी छोटी फुणसियां हो जावे जगह जगह पूरे शरीर पर, कलंगी पर, गलकंबल पर, आखरी पुतलिया माथे और सिर माथे फुणसियां हो जावे, तो वही मेन लक्षण है कि फुणसियां अगर आपने दिखे तो आप समझ जाओगे वो फाउल पॉक्स बीमारी है। इनमें संपर्क भी एक मुर्गी दूसरे मुर्गी में संपर्क में आवे तो भी वो एक दूसरे में फैले, मच्छर या पेरासाइट बारे पर जीवी आरी वजह भी आ बीमारी हो जावे। अब 3 तरह हुए चर्म रूप मतलब चमड़ी में फैलना,
1: अच्छा।
0: दूसरी हुए मुख रूप और तीसरी हुए आँखियाँ रूप। चर्म रूप में कहीं हुए कि इमें कलंगी कलंगी माथे चेहरे माथे और गर्दन माथे ए फुणसियाँ चेचकरी चेचकरा दाग हो जावे, गल कंबल पर गुदा पर भी हो जावे, तो यहाँ में हल्का भूरा रंगरा दाना नजर आवे, तो बन देख रहे धीरे धीरे पीला रंगरा एक दो दिन में पीला रंग में बदल जा भी वहाँ पर पहचान हो जावे। दूसरो वह मुख रूप इमें मुँह रे अंदर झिल्ली अंदर गला तक छला और दाना हो जावे, तो वो मुख रूप हुआ इरो चेचक रो फाउल पॉक्स रो। तीसरो वह आँख रूप इमें आँखियाँ पलकाउर स्त्राव शुरू हो जावे, सफ़ेद मवाद भी कई बार निकलन लाग जावे,
1: अच्छा
0: तो वो इरो तीसरो रूप है आँख रूप। ओवरऑल अंडा उत्पादन तीनों ही रूपों में अंडा उत्पादन में कमी आ जावे, आहार रे प्रति रुचि पक्षी री कौन रहे हुए, ताप टेम्परेचर भी रोपट जा बुखार टाइप हो जा और उग्र रूप हो जावे, तो बस पक्षी मरना भी शुरू हो जावे। इमें भी रोग रो बचाव ही उपाय है, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन बीमारी होने पहले वैक्सीनेशन आपने करना होना चाहिए। 6 और 8 सप्ताह की उम्र में इरो वैक्सीन लागे, वो डॉक्टर साहब संपर्क कर और वैक्सीन लगवानी चाहिए।
2: बिल्कुल साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और अब जो बखत है बंसी भाई वो है गीतड़ ले रो।
1: बिल्कुल हरकू भाई
2: है? सुना दू
1: एकदम साहब
2: आप से सुनो भैया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भैया बार आप सुनियो भी एक मीठो मीठो सो गीत रड़ लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। और आज आप बातचीत करिया मुर्गिया रा प्रमुख रोग रोकथामरा उपाय विषय पर।
2: डॉक्टर साहब क्या करे कि भाई जीवारी और पशुवारी सुरक्षा बहुत ही जरूरी हो या करे और मैं चाहे किड़े भी रूप पारे मायने हो या करे। अब बात करा जैव सुरक्षा री तो मुर्गिया माए जैव सुरक्षा रो काई महत्व है, इन बाबत आप जानकारी दे सर।
3: बायो सिक्योरिटी या जैव सुरक्षा बहुत जरूरी है। ई में आप सब पक्षियों रो स्वच्छता रो विशेष ध्यान रखनो पड़े, नहीं तो कई तरह रा इन्फेक्शन चूहा अपने पोल्ट्री फार्म में नहीं घुसे, इसका भी विशेष रूप ईरो भी आपने विशेष रूप ध्यान रखना पड़ी, कोई तरह रो इन्फेक्शन नहीं आवे। अपने जब फार्म डालते हैं नया तो भी टाइम डालना, जब नया जब चूजा खरीद लावा जठों भी तो ईरो भी आपने ध्यान रखना पड़े कि जठों भी आप ला रहे हैं वो 3 महीना तक या 4-6 महीना तक

0: कोई बीमारी नहीं आई हुआ, इसी जगहों ले रहा हूँ।
1: अच्छा
0: जी वाहन में आ रहे हो, वो वाहन भी इन्फेक्शन
1: साफ सुथरा होना
0: साफ सुथरा
1: चाहिए।
0: हुए, तो ये सब चीज़ा ध्यान रखना पड़े। इनमें अंदर घुसने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और फुटपाथ वगैरह, आप अंदर हैंडलर करना वाला वे मास्क वगैरह गम बूट वगैरह वे पैर जावे, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आऊँ बायो सिक्योरिटी जैव सुरक्षा आरी मुर्गी फार्म री जरूरी है।
1: बिल्कुल सर, कुल मिलाकर साफ सफाई दी जी भूमिका है बा महत्वपूर्ण है, और चाहे आवन जावन रो जिको भी वाहन है वो हो, चाहे बे जठे भी पशु दड़बे में रहे बीबी भी,
0: हाँ
1: साफ सफाई रो भी बहुत महत्व है।
0: बीरो बीरो लीटर जो आप नीचे बिछड़ो हुआ है, बीरो भी बहुत ध्यान रखना हुआ है, साफ सफाई रो बिल्कुल
1: पर
0: जरूरी है।
1: अब एक डॉक्टर साहब आप सुमे और पूछना चाहूंगा कि संतुलित आहार और साफ पानी मुर्गियां रोग से बचाव में किन भात सहायक रहे।
0: संतुलित आहार अपने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हमारे राजूवास में भी है, और जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स है बहु बातचीत कर, जब भी आप फार्म डालो पशु फार्म, तो वो पूरा प्रोटोकॉल है न्यूट्रिशन रो, चूजाऊँ लेर जन्मू लेर और आगे जू जू उम्र बढ़े भी जू, और ब्रॉयलर रो अंडा देवण री टाइम का ही आहार रहना चाहिए, क्लाइमेट रे हिसाबों भी सर्दी गर्मी में थोड़ो बहुत बदलाव आहार में लाना चाहिए, बारिश रे टाइम में कहीं है बीमारियां रो वैक्सीन, तो वो सब जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है हमारे राजूवास विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सको, और नियर जो नज़दीक आप रहे पशु चिकित्सक है वहाँ भी संपर्क कर, और एक प्रोटोकॉल रहे तहत ही आहार देवा, पेयजल भी बहुत सुरक्षित होना चाहिए, अन्यथा ये बीमारियां सकला पशु मुर्गियों वार इंसाना मासी आदमी मासी बहुत खतरनाक रूप भी ले लेवे कई बार, तो आहार और पेयजल रो बहुत संतुलित रूप में ध्यान रखना पड़े। ऑल आउट ऑल इन भी एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, मुर्गिया ने एक साथ 2-3 महीना में एक साथ सारी मुर्गियां ने अपने बेच नयो लॉट ले आना चाहिए, लंबे टाइम तक मुर्गियां नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी कर बेचा एक टाइम ऐसा एक साथ सब बेच दो, वो तो ऑल आउट ऑल इन नियम है, और वापस लाना 3 सप्ताह
1: अच्छा।
0: तक खाली रखो, पहले सप्ताह में भी ने बीरो लीटर चेंज करो, दूसरे सप्ताह में बीरी दीवारा इवारा ये सब डिसइंफेक्टेंट साबुन डिटर्जेंट साफ करो, तीसरे सप्ताह में वहाँ पर कलर वलर कर, 3 सप्ताह बाद में पाछो दूसरों लीटर लाना चाहिए, तो ये सब भी ध्यान रखकर।
1: कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऑल इन और ऑल आउट ये बात अगर आप ध्यान रखा, फिर 3 सप्ताह जो अपने डॉक्टर साहब बताए ये छोटी छोटी बातें हैं पर आप वास्ते बहुत ही महत्व बातें हैं, और इन बातें अगर आप ध्यान रख सा तो देखो आप जो इन्वेस्टमेंट के पीछे जी को लैगनी बेरो अपन ने अच्छे भुगतान भी होता रहसी, और नहीं जाने देखो ये बीमारी है वे बड़ी नुकसान दे हुआ करे।
2: और इन नुकसान रो जो बचाव है वो उपचार है।
1: हाँ
2: है, और इन वो क्या करें कि भाई उपचार जो है बचाव जो है वो कौन कर सके, जो हो सजग।
1: हाँ
2: और सजग आदमी जिका करे सवाल।
1: हाँ
2: है, तो देखो सर गौरा भाई है जो को कागज में लिखकर भेजे सवाल डॉक्टर साहब ने
1: लिखे गौरा भाई।
2: गौरा भाई कहे कि भाई जे कोई मुर्गी माए रोग रा लक्षण दिख जावे तो मुर्गी पालक है उन्होंने किसा किसा काम है जिका तुरंत करना चाहिए जल्दी सु, ताकि उन्होंने जी मुर्गियां वे बचोड़ी रहे।
1: बढ़िया सवाल है,
0: बहुत बढ़िया सवाल है किसान भाई। ये सवाल रो एक मतलब इनिशियल जवाब वही दूं कि आपने सब पहले तो जो नजदीकी डॉक्टर है बीकन तुरंत आप टेलीफोन नंबर रखो, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपने कहना फोन नंबर पर पशु चिकित्सक रहना चाहिए, तुरंत संपर्क करो, आप जो भी लक्षण दिख रहा है तुरंत माने बताओ, और अगर वो डॉक्टर साहब वटे विजिट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पक्षी ने पूरा प्रोटोकॉल साथे मारे वटे ले जाओ, दिखा दो लक्षण और बे जिया बताओ बिया आप ट्रीटमेंट लो, आप रे हिसाब में कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, आप रे हिसाब में ट्रीटमेंट दे तो गड़बड़ आगे और फैल सके वह बीमारी, तो इसो काम नहीं करना, तो डॉक्टर साहब संपर्क कर, और राजूवास टोल फ्री नंबर है 1800-180-6624, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सको, और धीनेरी बातें टाइम टाइम देखता रहो तो वहाँ में भी काफ़ी बातें आप बतावा, तो वह ध्यान रखे पशु भाई पशुपालक भाई और मुर्गी पालक तो काफी राहत मिल सी।
2: तो डॉक्टर साहब एक सवाल और दिमाग रे मायने आवे कि भी टोल फ्री नंबर है उनारे मायने कोई रात बरात रे भी फोन कर सका की?
0: बिल्कुल भी तो 24x7 है,
2: अच्छा।
0: लेकिन रात में 9 बजे तक तो हमारे बैठे डॉक्टर भी उपलब्ध रहे,
2: अच्छा।
0: फिर बाद में भी कोई इमरजेंसी है तो निश्चित रूप में आपने चाहे 12 बजे भी करनी पड़े तो जरूर आपने उपलब्ध रहे सी, 24x7 सेवा उपलब्ध है राजूवास री तरफ।
1: घर करा हमारा जगह पशुपालक भाई बहन काम में भी लेवे है, ठीक है सर। और अब एक चालती चालती बेला एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि छोटा और मध्यम तबके रा मुर्गी पालका ने रोग नियंत्रण और रोकथाम रे बाबत आप कई संदेश देवना चाहो सा?
0: बिल्कुल साहब, छोटा मुर्गी पालक भी आपने बैक यार्ड पोल्ट्री फार्म हुआ घर रहे पीछे बाड़ा में भी छोटा बड़ा रूप में नहीं कर

0: छोटा रूप में मुर्गी पालन करे तो भी यार इन्वेस्टमेंट आर्थिक रूप इतना सक्षम नहीं हुआ कि बहुत बड़ा स्तर पर करवा। तो माने वैक्सीनेशन रो जरूर ध्यान रखना चीज है, पशु चिकित्सक आजकल सरकार फ्री वैक्सीनेशन भी कर रही है, तो पशु चिकित्सालय में संपर्क कर और वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और बीरे अलावा भी अगर कोई बीमारी आ जावे तो तुरंत पशु चिकित्सकों संपर्क कर और जरूर पशु चिकित्सक होंगे वो आपको उपचार उपलब्ध कराएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अगर स्वच्छता होगी खान पान उसका न्यूट्रिशन, अभी आप पूछो पहले मैंने खान पान और पेयजल मारो स्वच्छ हो सी एकदम साफ सफाई रहसी और तरीका राखो तो बीमारी आप पर आवे ही नहीं, तो इसो काम ही नहीं पड़े बीमारी रो, वो आप ध्यान रखो।
1: तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, फिर बारज करूँ कह खान पान है और स्वच्छता है, दूसरा है ऐसा कि आपा समय समय पर टीकाकरण करा
2: हाँ
1: और समय
2: बिल्कुल
1: समय पर आपा डॉक्टर साहब से राय लेता रहा तो आपा जो काम धंधा है वो अच्छो चाली और पशु भी आपा रहा है वह भी स्वस्थ रहसी। और अब जो बखत है वो इशारों कर रही है आज्ञा लेवण रो,
2: और समय जी की कदर है और सम्मान है वो तो सकला ने करना ही चीज है।
1: बिल्कुल सर। तो भैया मैं आपने बता दूं आज आपा बातचीत करी मुर्गिया रा प्रमुख रोग और रोकथाम रा उपाय इन विषय पर, और आज आपने जानकारी देवण सर पधारिया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आप चौपाल में पधारे और हमारे पशुपालक ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इन सर मैं आपने देवा धन्यवाद और करा
2: राम राम सर।
0: राम राम सर।
3: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढेणेरी बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
5: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज निंदा कर किया बैठे हो।
6: काई करूं दाबू बेटा
1: राय लेता रेवा तो आप पर जो काम धंधा है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov।
1: अभी पशु पालक श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम धीणेरी बातें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। श्रोताओं ने सुनी भेंटवार्ता मुर्गियों के प्रमुख रोग और रोकथाम के उपाय विषय पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़, सहायक आचार्य वेटरनरी कॉलेज बीकानेर से बातचीत। कार्यक्रम में सहभागिता थी श्री राम सहाय हर्ष और श्री चंद्रशेखर जोशी की। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी श्रीमती बरकत हनवी व्यास और संयोजनकर्ता थे श्री अमित सिंह। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख

0: उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पुरानी फिल्मों से गीत।

0: फिल्म का नाम मान जाइए। गए कलाकार किशोर कुमार, गीतकार नक्श लियालपुरी और संगीतकार जयदेव।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़

0: परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है मधुमती, बोल शैलेंद्र के और संगीत सलील चौधरी का।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और अब सुनिए श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है महान, बोल अनजान की और संगीत आर डी बर्मन का।

ये थी राजकुमारी फिल्म का नाम महल, गीतकार जे नक्षब और संगीतकार खेमचंद प्रकाश। अब सुनिए महुआ फिल्म से मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार हैं कमर जलालबादी और संगीतकार सोमिक ओमी। सोनिक ओमी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपए का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हमने वन रेशन कार्ड जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख

मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है।

0: कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 करोड़ 86 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में पीएचईडी और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम से कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले एक साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
2: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है, जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
1: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों को नीट यूजी 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरएसी जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और

0: आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में ये कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरबाणी तथा शबद कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुँच रही है। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के 8 नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालोतरा के प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री के विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई। जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालोतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रम

0: माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी देवन री मंजूरी दीनी है। इन फैसलाओं नौजवानों ने खेलना रा हलका माए आगे बढ़न और प्रदेश माए खेलना रा विकास ने बढ़ावो मिलेला। राज्य में कृषि उपज मंडी समितियां रो बुनियादी ढांचो मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18 करोड़ 86 लाख रुपया रा खर्च वाला विकास रा काम मंजूर कीना है। ई रकम सोजत पलसाना श्रीमाधोपुर बीकानेर नागौर और दुदू कृषि उपज मंडी में विकास रा काम कराया जावेला। इस आगे यार्ड और संपर्क सड़क बनावण और टूटोड़ी सड़क री मरम्मत रा काम ही कराया जावेला। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय माथे आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला राखी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रा तहत कृषि विभाग री ओर डीडवाना माए राखी जी कार्यशाला माए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी किसानों खेती री कुल जमीन कमू कम 10% हिस्सा माए प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। नागौर माए भी कार्यशाला माए किसान आयोग रा अध्यक्ष सी आर चौधरी प्राकृतिक और जैविक खेती माथे जोर देता था का कहो का इनो किसाना री आमदनी माए बढ़ोतरी फै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तहत हरियाली बधावण और जमी हेठ पानी रा लेवल माए सुधार सारू जतन करण रा हुक्म दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी व पौधा रोपण और चरागाह विकास से जुड़िया काम माए स्थानीय और हल्का अनुकूल प्रजातियां माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA विद्यार्थियों ने उजू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा साफ गोई सागे करावन रो भरोसो दिरायो है। एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करन री कोशिशा ने करड़ायूं रोकी जावेला। NTA उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 1446 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माए आयोग रा मुख्यालय माए खबरनवीसा ने लारला एक साल माए आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा ने जानकारी दीनी। वे कहो का आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई राखण और परीक्षावां टेम सर करावण सारू खास कोशिशा कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47 लाख बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 बत्ती परीक्षावां करार 10,000 उम्मीदवारा री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हूँ पहली आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे योगाभ्यास कार्यक्रम राखी चियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा RAC रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास कीनो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर माए वारा रहवास माथे परिवार वाला और सहायका सागे योगाभ्यास कीनो व लोगों योग जुड़बारी अरज कीनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित राखण री बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावणो चाहिए। राजस्थान विधानसभा परिसर में आई काल समारोह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में योग अभ्यास कार्यक्रम राख्यो जावेला। राज्य में फेर रही आंधी बारिश हूँ पारो उतरियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 24 घंटा माए प्रदेश रा उगनी हल्का माए गरज चमक सागे बारिश रा आसार है जदक आतुणी हल्का माए कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन बीच आज दोपहर पाछे चूरू झुंझुनू श्रीगंगानगर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिला माए तेज अंधड़ सागे बारिश हुई। झुंझुनू और नवलगढ़ माए ओला पड़िया। सिख धर्म रा 5वां गुरु श्री अर्जन देव जी ने आज मारा

0: शहीदी दिवस रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रहा है। त्याग और सेवा रा प्रतीक गुरु अर्जन देव ने शहीदा रा सरताज ही कहा जावे है। इस मौके गुरुद्वारा माए खास दीवान सजाई जिया और गुरबाणी और शब्द कीर्तन रा कार्यक्रम राखी जिया। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश में 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम फैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण EPOS मशीनों करियो जा रियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर रिहोड़ा माए तमगा जीतने वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और RPSC लारला एक साल माए 47 लाख उम्बत्ता उम्मीदवार सारू 187 उम्बत्ती परीक्षावां कराई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुन वाला जिका भी किसान भाई बहन हैं, आप सगला ने आप रोहितालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और आपकी बहन मुक्ता जैनदार घणा घणा राम राम।
0: मुक्ता बहन देखो जेठ जा रही है और जेठ की भी अब की दुलड़ो है और गर्मी तो पड़ी पर सागे सागे बरखा भी होने लगी और अब थोड़ा दिन मायने आप आषाढ़ लाग से और आषाढ़ लाग ही जने आपने मालूम है कि चौमासो भी लाग जैसी चौमासो लाग सी तो बरखावा भी होवेला और सुगंध सोठा बता रही है कि आने वाले बखत मायने हो सके बरखा हुए सूखी बरखा हुए पर आपने कही है कि भी बरखा रो जो पानी है भी ने भेड़ो करना पड़ से।
1: नमामि भाई आप सही कह रहे हो कि मौसम बदल रही है मतलब आगे चौमासो लाग रही है बिरखा हो सी और बिरखा देखा कि अभी हो ही रही है मौसम एड़ो पलटे हुए कि पत्तो ही कौन चले कदी आंधीर कदी मी है ने आंसू पहले ही आप ने बीकानेर में आप देखा कि कम होया करे मी पर अब की बार इन्नी चोखो मी आयो है और पानी जिको आप कह रहे हो वर्षा जल है भी ने संचेत कर राखणो है आपने आप बहुत ही चोखी बात कही है क्योंकि आप देखियो कि पिछला दिनों में जिको पानी होनी बहुत ही कम आऊं तो अपनी नहरबंदी होगी आप देखियो पानी एक ऐसी चीज है जिसकी अपने हर काम में मेरी जरूरत पड़िया करे चाहे घर रो काम ले ला चाहे खेती बाड़ी ले ला या चाहे कोई और भी जी सड़क निर्माण है कोई भी तरह का कार्य जल्दी आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़े अगर आप समय रहते जल रो संरक्षण कर लांगा तो आप आने वाले समय में इनको फायदो लेवांगा।
0: इरे वास्ते देखो मुक्ता बहन कई आप जिकी तकनीका है बरखा रे पानी ने भेड़ो करने रही पीने परोटन रही भी तकनीका रही अगर बात करा तो पहली तकनीक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आप बहुत ही चावी है बहुत ही लोगर मन भावनी आ तकनीक है क्योंकि ये माने कोई लागणो की को नहीं इमें तो ये है कि डागड़े रोज को पानी है वो नाले में नहीं बेवे बल्कि बिने पाइप रे सायरे कुंड रे माने जोड़ देवे या तो बठे जोड़ देवे या टैंक रे माने जोड़ देवे या भूमिगत को जलाशय बनियोड़ो हुए आप बठे ले जा छोड़ देवे और या फिर क्या है रिचार्ज पिट रे माने छोड़ दे बेसो कहीं हुए कि जमीन रे माने जो पानी लेवल कम हो तो जा रही है वो पाछो बढ़ने लाग जावे और सबसे बड़ी बात है बिर अलावा चेक डैम तकनीक है बिर माने नाड़ा है या छोटी नदियां है बारे माथे छोटा छोटा बांध बना लेना चीजें ताकि पानी ने रोकियो जा सके बरखा आवे तो वो पानी यहाँ ही नहीं बेवे बल्कि रोकियो जा सके। बिर अलावा परकोलेशन टैंक विशेष प्रकार जड़ाशय हुए बिन माने पानी है जिसको अपना भेड़ो कर और बिने पाछो कहीं हुए वो पानी भी रिश्तों रहे जमीन रे माने रिश्ते रिश्ते जमीन रे माने जिसको पानी है वो पाछो ऊँचो आवण लाग जावे। इसके अलावा कंटूर बंडिंग तकनीक है तो के

0: बार ढाल वाली जमीन हुए बड़ा पानी क्या आवे कि बरखा आवे तो वो पानी सीधो हेठे बह जावे और बेकार चले जावे। पर इन तकनीक रे कारण सु माटी सु बांध बनाए दियो जावे यानी माटी सु क्या रुके
1: रुके
0: धीरे धीरे पानी रुक बुक रहे तो वो जमीन रे मायने वो रिसनो शुरू हो जावे और वो जमीन रे मायने पानी है वो रिचार्ज होता रहे यानी आप कह सका नहीं कुआ रिचार्ज हुए या रिचार्ज पिट रे साइड पानी ने क्या सीधो जमीन रे मायने माय तक क्या पुगाए जावे इस जमीन रो जो पानी रो स्तर है वो बहुत ही ऊंचो हो जावे।
1: और नमामी भाई आप बात करा तो आपने देखो अब बहुत ही चौकी आप जानकारी दी है कि जल भंडारण आपने मतलब भेड़ो करनो है बिने सहेज रखनो है ताकि आने वाले समय में आप भी लाभ ले इसका। और लाभ री देखो बात है अपना जिका किसान भाई लोग नहीं अब एक आगे गीतड़ लेसी लाभ तो आप एक मीठो सो गीतड़ लो सुना।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नेशन। जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मुक्ता बहन, एक बात है कि आपने 12 महीना चालू रहे जून रो, और जून जुलाई यानी कि खरीफ की फसल की बुआई रहे समय है, और इन बेला कई तरह की फसल है आपा पश्चिमी राजस्थान में बाया करा, तो इन बारे में थोड़ी सी जानकारी देवो ताकि आपा श्रोता है बे सुन सके।
6: नमामि भाई, जिको आपाणो बीकानेर जिको राजस्थान उत्तर पश्चिमी जिको क्षेत्र है नी, बहुत मरुस्थलीय भाग है, और आटा कम वर्षा, उच्च तापमान और मिट्टी, रेतीली मिट्टी वास्ते जानियो जावे। खरीफ जिकी फसल है बा मानसून रे आगमन के सागे जून जुलाई में बोई जाया करे, जिकी आप अभी बताई हो, और सितंबर अक्टूबर में काटी जाया करे। और आज की फसल है बा मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहा करे, और बीकानेर में खरीफ जिकी फसल है बा मरुस्थलीय परिस्थिति अनुसार ही विकसित हुआ करे, और यही अनुसार ही फसलों रो चयन भी हुए है ताकि कम पानी में आप अच्छी उपज ले सका। और इंगे सागे आप देखो, आप बात करा कि जी हाँ की बाजरो है बीकानेर की सबसे जिकी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल हुए, और बाजरा में पोषण की दृष्टि से भी आप देखा कि बहुत ही चौकी होया करे है। और इंगे सागे सागे आप बात करा तो मूंग है, मोठ है, गवार है, और मूंगफली भी बोया करे है।
5: यानी कि मूल कहना मतलब वो है कि आप जून जुलाई माने फसल बाई जावे, और सितंबर अक्टूबर माने ये फसल पाछे कटाई होवे, और विशेष तौर से माने बाजरी है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, तिल है, थे बताओ जाके, और कड़ी पानी वगैरह हुए सिंचाई का माध्यम तो मूंगफली भी लाग जावे। तो बात तो बड़ी सावनी है, पर सागे सागे एक मैं भी एक गीत सुनाना चाहूंगा।
6: हाँ तो सुनाओ सर।
5: सुनो सो गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सर की शान। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे?
2: तो साबी बोती फुटरो से गीतड़लो सुनियो और संदेशा सुनिया। अब आपा किसान बयावा से बोती चोखी सी जानकारी ले रहा यहाँ ग्रामीण विकास रे मायने नववर्डरी भूमिका। और आ जानकारी दे रहा है श्री रमेश तांबिया और आसु जानकारी ले रहे है डॉक्टर नमामी शंकर आचार्य। तो सुना सा जानकारी।
3: मित्रों, भारत की 60% आबादी कृषि या पशुपालन पर आधारित है। इस हेतु सरकार समय समय पर किसानों विशेषकर ग्रामीणों के विकास हेतु कई योजनाएं लाती रहती है, जिसमें नाबार्ड की विशेष भूमिका रही है। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका विषय पर। चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में पधारे हैं श्री रमेश तांबिया। आप जिला विकास प्रबंधक बीकानेर नाबार्ड से हैं। सर, आप यहाँ पधारे हैं, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ।
4: राम राम साथियों, राम राम।
3: सर, मेरा पहला प्रश्न है कि नाबार्ड है क्या?
4: वास्तव में तो नाबार्ड जो है 1982 से पहले अगर जाएंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक का एक भाग हुआ करता था।
3: अच्छा।
4: भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य है, आज सबसे बड़े बैंक होने के नाते 1982 से पहले ग्रामीण विकास में भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाने के लिए था। लेकिन ऐसा महसूस किया सरकारों ने उस समय कि भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट का काम है या जो मुद्रा का काम है देश में, उसके साथ साथ ग्रामीण विकास को पूरी तरह से करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहा है, या ये समझिए कि वो पूरी तरह से ग्रामीण विकास पे अपना ध्यान लगा नहीं पा रहा है। तो 1982 में एक अधिवेशन पास करके भारतीय रिजर्व बैंक से अलग करके एक पूरी संस्था को बनाया गया, जिस संस्था का नाम नाबार्ड रखा गया। इस नाबार्ड की नींव रखने के लिए क्राफी कार्डा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद इसने अपना काम शुरू किया। इसका पहला लक्ष्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग आज बस रहे हैं उन लोगों के ग्रामीण स्तर को बढ़ाने के लिए, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंकों के साथ उनको जोड़ने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से उन लोगों के लिए जिनकी उसको वास्तव में जरूरत है उन तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए एक डेडिकेटेड संस्था बनाई गई। उसी संस्था का नाम रखा गया नाबार्ड। नाबार्ड एक छोटा नाम है, मतलब एक शॉर्ट नाम है। इसका अगर पूरा नाम जानेंगे अपन, तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में नाम दिया गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। हमारे नाम में ही वो सब कुछ छिपा है जो हम ग्रामीण विकास के लिए करने के लिए तत्पर हैं। और भारत सरकार ने इस संस्था को 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग करके इसी कार्य के लिए अलग से बनाया गया है,
3: अलग संस्था के रूप में बना दिया।
4: बिल्कुल
3: जी। सर, मेरा प्रश्न है कि ग्रामीण जितने भी हैं उनको इससे कैसे लाभ मिल सकता है?
4: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है, जिसकी मतलब वास्तव में लोगों को जानने की जरूरत है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक को नबार्ड से अलग करके या भारतीय रिजर्व बैंक में से एक संस्था को निकाल करके पूरी एक अलग संस्था क्यों बनाई जाए। वास्तव में इसके बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि आज किसान जिस स्थिति में है यहाँ तक उसको लाने के लिए, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर आज भी ग्रामीण बैंक के अंदर जाना चाहे सामान्य रूप से, तो उसके मन में एक डर का माहौल रहता है, उसको एक डर रहता है विचित्र तरह का कि वो बैंक में अगर जाएगा तो उसे वो सम्मान जिसकी वो उम्मीद रखता है वो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
3: सही बात है।
4: उसी सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए कि उसको सम्मान के साथ बैंक में अंदर जाया जा सके,

0: के, उसी सम्मान को उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड को बनाया गया। हम ग्रामीण स्तर पे अपने अवेयरनेस कैंप जो हर ब्रांच पे, ग्रामीण बैंक को चाहे कॉमर्शियल बैंक को चाहे वो सहकारी बैंक को, इन सभी के माध्यम से किसानों को एकजुट करते हैं और उनको बताते हैं कि आप अपने बैंक के माध्यम से किस किस तरह की सुविधाओं का लाभ ले सकते हो।
1: अच्छा, जो अभी जो सरकारी जितनी भी योजनाएं आती है,
0: हाँ हाँ,
1: जो किसानों को जोड़ रहे हैं इसे बैंक से,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो क्या ये इसी के अंतर्गत आती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो सबसे पहले मालूम ही होगा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना।
1: हाँ हाँ हाँ जी जी,
0: प्रधानमंत्री जी का पहला लक्ष्य ये है कि जो भी आदमी बैंक में खाता धारक है, बैंक से जुड़ा हुआ है, सिर्फ वही डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री सम्मान निधि का हकदार है
1: जी।
0: और पिछले साल ही फरवरी 2020 में भारत सरकार ने स्पेशल ये निर्देश जारी किया कि जो भी किसान केसीसी धारक है उसे मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिलना चाहिए। पहले क्या होता था कि एक सामान्य किसान जो कि छोटा किसान होता था, सिर्फ वही इसके लिए अधिकारी हुआ करता था। फरवरी 2020 से भारत सरकार ने इसमें लिबरलाइजेशन करते हुए, इसको सामान्य करते हुए, कोई भी आदमी जिसके पास कितनी भी कृषि भूमि है, अगर वो केसीसी अपने पास रखता है तो उसको प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। इन सभी उद्देश्यों के मद्देनजर, साथ ही साथ केसीसी का आपने नाम जो सुना है, कृषि किसान क्रेडिट कार्ड, कहने को तो ये क्रेडिट कार्ड सामान्य लोगों जैसा है
1: जी जी,
0: लेकिन ये किसानों के लिए जो है जरूरत के समय पैसा उपलब्ध कराने का वो माध्यम है कि अगर उसे किसी भी समय पैसे की जरूरत हो वो एटीएम पे जाए, अपने केसीसी कार्ड का इस्तेमाल करे और अपने पैसे की जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल ले। सामान्य रूप से 3 लाख तक कोई भी किसान केसीसी इशू कराता है तो भारत सरकार की तरफ से उसको 4% ब्याज माफी दी जाती है और 3% राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। अगर वो कमर्शियल बैंक से लेता है, किसी भी वाणिज्यिक बैंक से, किसी प्राइवेट बैंक से अगर केसीसी इशू कराता है तो उसे 4% सालाना ब्याज में छूट दी जाती है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अगर उसी किसान ने अपना केसीसी सहकारी बैंक से लिया है तो सहकारी बैंक से लेने में, क्योंकि सहकारी बैंक में राज्य सरकार की भी भूमिका बराबर की होती है, इसलिए 4% उसे दिया जाएगा भारत सरकार से और 3% दिया जाएगा उसे राज्य सरकार से। केसीसी पर 3 लाख पर अधिकतम जो ब्याज की दर है वो 7% है, तो किसान के लिए ये 0% पर पैसा उपलब्ध कराने का माध्यम है, क्योंकि आज उसे बीज की जरूरत है, खाद की जरूरत है, साथ ही साथ ट्रैक्टर और दूसरे इम्प्लांट्स की जरूरत है, वो सब सुविधाओं को उपलब्ध पूरा करने के लिए 3 लाख रुपए से पूरे बैंक से प्राप्त हो जाते हैं।
1: ये तो अभी आपने किसानों के बारे में बताया, लेकिन जब मैं ग्रामीण की बात करता हूँ तो ग्रामीण में वो भी लोग आते हैं जो खेती का काम नहीं करते हैं, जिसमें महिलाएं भी है, तो वो भी कोई हस्तकला से संबंधित है या शिल्प कला से संबंधित है, तो क्या नाबार्ड जो है उनको भी प्रशिक्षण देती है या उनको ऋण उपलब्ध करवाती है?
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात बताई है। परिवार का मुखिया अगर कृषि का कार्य कर रहा है तो परिवार के बाकी सदस्य जैसे महिलाएं हैं
1: जी,
0: बहनें हैं और बच्चियां हैं
1: जी जी,
0: उनके लिए नाबार्ड का सबसे बड़ा पायनियर प्रोजेक्ट है, उसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप।
1: अच्छा,
0: 1992 से ये नाबार्ड द्वारा चलाया जा रहा है और ये उन महिलाओं, उन बहनों और उन बच्चियों के लिए है जो सामान्य रूप से 10 से 20 के समूह में एकत्र होती हैं, जिनकी एक तरह की सोच हो।
1: केवल महिलाओं के लिए?
0: ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं, लेकिन हमने प्राथमिकता इसमें महिलाओं को इसलिए दी है।
1: अच्छा,
0: कि आप और हम सभी जानते हैं पुरुष मुख्य रूप से क्या करते हैं, कृषि प्रधान देश है हमारा, वो कृषि के कार्य हम होंगे, अगर वो कृषि के कार्य में लगे हैं तो दूसरे किसी कार्य में अपने को पूरी तरह से तन्मयता से उसमें नहीं जोड़ पाएंगे। तो हम उनको क्या करते हैं कि उनके परिवार की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध कराते हैं, हैंड होल्ड सपोर्ट भी देते हैं उनको, और बैंक लोन में जो 7% ब्याज लगता है वो भी भारत सरकार राज्य सरकार के माध्यम से उन्हें अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, तो हमारी बहनें उसमें प्रगति आसानी कर पाती। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी जो समस्या इन दिनों आपने देखी होगी कि हमारी बहनें और माताएं हैं उनको न्यूट्रिशंस की बड़ी कमी है। तो राजस्थान में स्पेशल रूप से हमारे यहाँ की बहनें कमजोर होने का, एनीमिक होने का कारण स्वयं और उनके आने वाले परिवार की पीढ़ी को उतना मजबूत बॉन्ड नहीं कर पा रही हैं। उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के किचन गार्डन एक योजना नाबार्ड के माध्यम से शुरू की है, यानी कि कोई भी बहनें माताएं अपने परिवार के घर के कोई भी ऐसे हिस्से में जो 10x10 हिस्सा हो या उससे थोड़ा बड़ा भी हो, तो हम अपने केवीके और किसान सेवा केंद्र के माध्यम से उन्हें बीज उपलब्ध कराते हैं, खाद उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना उनको, वहां पर अपने घर पे फल सब्जियां वो तैयार करें और उनको अगर वो खुद खाएंगे तो इसके 2 फायदे हैं, एक तो सब्जी उनको बाजार से लाने में जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है वो बचेगा, दूसरा घर पे जैविक खेती के माध्यम से अगर वो खाएंगी तो वो खुद भी स्वस्थ रहेंगी और उनके आने वाली पीढ़ी को भी वो स्वस्थ रखेंगी।
1: यानी नाबार्ड जो है वो महिलाओं का सर्वांगीण विकास के लिए सोच रही है, आपके कहने का तात्पर्य?
0: हाँ जी हाँ जी।

0: अच्छा, एक प्रश्न और है कि भारत सरकार की जो योजनाओं का नाबार्ड के द्वारा क्रियान्वयन जो होता है वो किस प्रकार से है?
1: आपने देखा होगा कि जब से नाबार्ड बना है,
0: हाँ हाँ,
1: हमारे जो जितने भी निर्देश हमें प्राप्त होते हैं हम उनको भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त करते हैं और उनको पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। भारत सरकार लगभग हर साल बजट में RADF और नाबार्ड को कुछ कार्यों को विशेष रूप से आवंटित करती है। विशेष रूप से कार्य देने का लक्ष्य ये होता है कि उनको ये पता है कि यही संस्था है जो जमीनी स्तर पर सबसे आखिर की व्यक्ति तक, जिनको हमारे शब्दों में हम कहते हैं कि अनरीच पीपल, ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिलाएं जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है, हम वहां तक पहुंच अपनी रखते हैं। तो हम उनके माध्यम के लिए हम उनको क्या करते हैं, भारत सरकार की एक रिसेंटली योजना है AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके माध्यम से किसान अगर किसी भी तरह की पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी, फसल तक के लिए तो KCC हो गया, फसल के बाद अगर उसे कोई काम करना है, यानी कि अपनी फसल को सुरक्षित रखना है, कहीं गोदाम बनाना है अपने खेत में, जिसको अपन सफा कहते हैं यहाँ पर बीकानेर में, हम लोग सफा कहते हैं,
0: सफा
1: अगर उसको वो बनाना है, या कोई उसका अनार का उत्पादन है, या कोई ऐसा उत्पादन वो अपने खेत में लगा रहा है जिसको प्रोसेसिंग, जैसे अपने यहाँ किन्नू बहुत अच्छा पैदा होने लगा
0: जी,
1: अगर किन्नू प्रोसेस करके उसका पल्प लगाकर बेचना चाहे, अगर ऐसे किसी भी तरह के वो कार्यों को करता है तो उसको 3% ब्याज में माफी मिलती है और 33% महिला और SC ST को कैपिटल सब्सिडी मिलती है, और सामान्य वर्ग का अगर कोई किसान लगाता है तो 25% सब्सिडी से भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है।
0: सर, जो राज्य सरकार की जो ग्रामीण योजनाओं में भी नाबार्ड की क्या भूमिकाएं हैं?
1: हाँ बिल्कुल है जी,
0: तो वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये भारत सरकार की योजना है, इसी क्रम में राजस्थान हमारा एक ऐसा राज्य है जो देश में अकेला ऐसा है जिसने एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 लागू की, जिसको 2024 तक लक्षित रूप से कार्य करने के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड को उसके लिए उसके कंधों पे जिम्मेदारी दी है। जिले में जो जिला विकास प्रबंधक होता है वो पूरी तरह से इस योजना को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या करता है, अवेयरनेस कैंप आयोजित करता है। अवेयरनेस कैंप के लिए हम राज्य सरकार की लगभग सभी संस्थाओं को साथ में लेकर के महीने में 4 से 5 कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हालांकि मैं आपको ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने पिछले एक साल में जितने भी कार्य किए हैं या जितने भी कार्यक्रम राज्य सरकार की योजनाओं के लिए किए हैं, उनमें कोविड एडवाइजरी की पालना का पूरा ध्यान रखा है।
0: जी जी जी,
1: 2 गज दूरी और मास्क जरूरी को हमने कभी भी नहीं भूला है। हर कार्यक्रम में हम इसको पूरी तरह से तैयार रखते हैं, मास्क लगाते हुए, दूरी रखते हुए लोगों तक ये सूचना पहुंचाते हैं कि राज्य सरकार के माध्यम से अगर कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट, गोदाम या पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी करना चाहे तो उसको 50% किसान को अनुदान के रूप में प्राप्त होगा और 5% ब्याज में माफी प्राप्त होगी। अगर वो अपने फसल को, फसल के बाद के इस कार्य को 300 किलोमीटर से दूर भेजना चाहे अपने ओरिजिनल प्लेस
0: से,
1: तो राज्य सरकार की तरफ से उसे जाने आने का जो भाड़ा है वो भी अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। इस कार्य को करने के लिए अगर उसके घर में बिजली का खर्चा होता है तो बिजली का खर्चा भी अनुदान के रूप में सीमित रूप से प्राप्त होगा, और अगर वो चाहे कि इस कार्य को करने के लिए उसे सोलर लगानी है तो सोलर से पर भी सब्सिडी प्राप्त होगी।
0: तो किसान भाई बहनों, अभी आपने जानकारी सुनी ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका विषय पर, और जानकारी दे रहे थे श्री रमेश तांबिया, आप जिला विकास प्रबंधक बीकानेर नाबार्ड से हैं। आपने सर आकर के यहाँ इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, राम राम जी।
2: तो सर अभी आप जानकारी सुनी ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका, और जानकारी दे रहा श्री रमेश तांबिया, और आसू जानकारी ले रहा डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य। तो जानकारी बहुत ही चोखी, किसान भाई लोग इन फायदों ले सी। और अब आप सुना एक और मीठो सो गीतड़ लूँ।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का

रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

ये था कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। शाम के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पुष्पा हंस के गाए इस भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, इस भक्ति गीत को गाया पुष्पा पगधरे ने, और अब सुनिए रास बिहारी देसाई की आवाज़ में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचा ये भक्ति गीत।

इस भक्ति गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: इस संदेश से पहले आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज, इन दोनों की आवाजों में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। और अब सुनिए आरडी बर्मन की तर्ज पर आनंद बख्शी का ये गीत। फिल्म का नाम है मैं आवारा हूँ। इसे गया है किशोर कुमार और आशा भोंसले ने।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और अब सुनिए, मैं 16 बरस की इस फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में अमित खन्ना का ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अब सुनिए श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाजों में मैं तेरा आशिक, इस फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा दीपक स्नेह ने और संगीतबद्ध किया नरेश शर्मा ने।

फिल्म का नाम मैदानी जंग। गीतकार के वर्मा, संगीतकार गुलशन बावरा, गाय कलाकार कुमार सानू और साधना सरगम। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोक गायिका फतेह कुमारी व्यास के इस गायन के साथ।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और अब सुनिए ये लोकगीत। गायिका हैं फातिमा।

0: गणेशनाथ के गाए लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI मस्ट इम्प्रूव लाइफ, widen एक्सेस, ड्राइव ग्रोथ एंड also हेल्प अस सस्टेन अ हेल्दी प्लेनेट। Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोबा के चेयरमैन और CEO बेनवा बेजा ने कहा कि

0: भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद।

0: देता हूँ।
1: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया।

0: सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:15 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया, गीतकार असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण। और अब सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, मन की आँखें फिल्म से मोहम्मद रफ़ी को, बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.5।

6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गजलें। सुनिए कार्यक्रम में सबसे पहले शुभा मुद्गल को।

0: आबिदा परवीन ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने

0: रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और सुनिए अब कार्यक्रम के आखिर में सुखविंदर सिंह को।

इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से श्रोता सुनेंगे राजस्थान दर्शन कार्यक्रम।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। ये गीत है फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से। इसे गए है अलका याग्निक और साथियों ने। गीतकार समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

ये थे लता मंगेशकर और मुकेश, फिल्म का नाम मन मंदिर। और अब सुनिए मनमौजी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का ये गीत। संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी।

ये थे किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम मनचली, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए फिल्म मांग भरो सजना से लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का ये गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सुमित नारायण, फिल्म का नाम मन, गीतकार समीर और संगीतकार संजीव दर्शन। अब सुनिए सावन कुमार का लिखा यह गीत, फिल्म का नाम है चांदनी। इसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। संगीतकार हैं उषा खन्ना।

ये थे आशा भोंसले, मोहम्मद रफ़ी और साथी, फिल्म का नाम जानी दुश्मन, गीतकार वर्मा मलिक और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब सुनिए प्रेम रोग फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में संतोष आनंद का ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms.

0: टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।